बच्चे के रोने की कोई भाषा कोई मजहब नहीं होता है। आधार घड़ते हो खुद ही और फिर चल निकलते हो अभिमान और नफरत करने के लिए। मालिक ने कहां पर बनाए हैं कोई चिन्ह कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ब्राह्मण है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 8। आज का कार्यक्रम आधारित है काव्य संग्रह मन की मौज पर। लेखक मसरूर कश्मीरी। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी।

पांच तत्व की सुंदर काया, माया की है ये छाया, जिसको देख के मूरख मनवा तू इतना भरमाया। जड़ को जड़ ही रहने दे तू, चिंतन का धर ध्यान, जग में जिसका कोई नहीं है उसका है भगवान। यह पंक्तियां मैंने कविता संग्रह मन की मौज से ली है, जो स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ पटवारी मसरूर की अप्रकाशित काव्य रचनाओं का संग्रह है, जिसका श्रद्धा पूर्वक संकलन उनके मंझले पुत्र श्री राजेंद्र पटवारी ने किया है, जो स्वयं भी नाशाद के उपनाम से कई दशकों से कहानियां, नाटक और कविताएं लिखते आए हैं, और साथ ही एक मान्यता प्राप्त चित्रकार और मूर्तिकार भी है। कश्मीर वासी स्वर्गीय प्रेमनाथ पटवारी मसरूर एक ऐसे कवि और लेखक रहे हैं जिन्होंने अपनी साहित्य यात्रा पिछली शताब्दी के तीसरे दशक से भी पूर्व ही आरंभ की थी, और उनकी रचनाएं अविभाजित पंजाब शहर से प्रकाशित बहारे कश्मीर एवं रहनुमाए तालीम जैसी उस समय की प्रतिष्ठित उर्दू पत्रिकाओं में

पहले आशिक सोपोरी के उपनाम से, तत्पश्चात मसरूर कश्मीरी के उपनाम से, उस समय भी प्रकाशित हो रही थी जब जम्मू कश्मीर प्रांत में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की कोई सुविधा तक भी उपलब्ध नहीं थी। फना फिउल इश्क होना ही अंजाम मोहब्बत है, फना होकर ही आशिक नाम हम मसरूर पाते हैं। मसरूर कश्मीरी एक परिचय। मैं मसरूर कश्मीरी के कुछ शब्द मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, जम्मू कश्मीर प्रांत में वितस्ता नदी के तट पर कश्मीर के प्रसिद्ध राजा अवंती वर्मन के मंत्री श्री सोया पंडित ने जिस नगर को बसाया था वो अब सोपोर के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पर 18 मार्च 1909 ईस्वी को मैंने सूर्य की पहली किरण देखी थी। अभी जन्म के 14 मास भी नहीं बीते थे कि मेरे पिताजी स्वर्ग सिधारे। 14 वर्ष की आयु पूरी भी ना हो पाई थी कि माता के साये से भी वंचित होना पड़ा। खामोशी मुंतजर है, बेजुबानी को जुबां कर दूं, हिले जिससे ये अर्शो फर्श पैदा वो समा कर दूं। अर्थात मेरी खामोशी इसी प्रतीक्षा में है कि अब मैं अपनी इस चुप्पी को तोड़कर अपने शब्दों से ऐसा वातावरण उत्पन्न करके इस पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दूं। अपने इसी संकल्प को मन में लेकर संवेदनशील और काव्यात्मक मन के 1930 के दशक वाले कवि मसरूर कश्मीरी 1970 के दशक में एक बार पुनः सक्रिय जागृत हुए तथा अधिक अनुभव एवं पूर्णता के साथ सशक्त नजर आए। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। लेकर आया हूं वितस्ता गीतमाला का एक और अंक जो आधारित है कवि स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ पटवारी, जिन्हें मसरूर कश्मीरी के नाम से भी जाना जाता है, के काव्य संग्रह मन की मौज पर। इस काव्य संग्रह को प्रकाशित किया है उनके सुपुत्र श्री राजेंद्र पटवारी नाशाद ने। आज सुनाता हूं उनके कुछ कविताएं और उनके साथ जुड़े गीत भी। बने रहिए मेरे साथ कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 8 में। मसरूर कश्मीरी लिखते हैं और कविता का शीर्षक है भटके राही भूल न जाना। भटके राही भूल न जाना, मंजिल अपनी अपना ठिकाना, भटके राही भूल न जाना। जीवन का तो राज नया है, दुनिया का अंदाज नया है, सोच नया है, साज नया है, नगमाए दिल नवाज नया है, रूप नया है, रंगे जमाना, भटके राही भूल न जाना। पहले अब वो जमाना नहीं है, किस्सा नहीं है, फसाना नहीं है, गीत नहीं वो तराना नहीं है, सोने का कोई बहाना नहीं है, जाग के अब तो होश में आना, भटके राही भूल न जाना। देश की तो बुनियाद अलग है, शेखे हरम है या ब्रह्मन है, इल्म व अलम की एक किरण है, जाने वतन है, शाने वतन है, वक्त पर अपना फर्ज निभाना, भटके राही भूल न जाना। दुख की कहानी गम की हकायत, भूल के अब है तुझ पे इनायत, शिकवा कहां का कैसी शिकायत, भूल न जा माजी की रिवायत, जीनत रंगे चमन बन जाना, भटके राही भूल न जाना। प्रीत के गीत मसरूर सुनाना, बिछड़ों को फिर एक बनाना, आपस का यूं राबता बढ़ाना, सूरत गंगे जमन बन जाना, दुश्मन को नीचे दिखलाना, भटके राही भूल न जाना, मंजिल अपनी अपना ठिकाना।

प्रस्तुत है मसरूर कश्मीरी की एक और कविता जिसका शीर्षक है प्रेम की नगरी बसा। निर्धन भेगर प्रेम पुजारी प्रेम की नगरी बसा। प्रेम हो मन मंदिर की आशा, प्रेम हो जीवन की परिभाषा, सुंदर सपना प्रिय तमाशा, प्रेम का खेल रचा पुजारी प्रेम की नगरी बसा। मोह के फंदे में मत आना, भूल न जा आदेश पुराना, धन दौलत पर क्या इतराना, निर्धन काम चला पुजारी प्रेम की नगरी बसा। भूमि हो दुनिया से निराली, ईर्ष्या द्वेष से बिल्कुल खाली, दाता कई पर एक न सवाली, ऐसे देश में आ पुजारी प्रेम की नगरी बसा। छाही हो हर सू हरियाली, प्रेम के पुष्प हो लाली लाली, झूमता हर्ष से मस्त हो माली, देख के बाग खिला पुजारी प्रेम की नगरी बसा। अतः कितना है प्रेम सागर, प्रेम के मोती जिसके अंदर, डुबकी मार के ले आ बाहर, प्रेम मंदिर को सजा पुजारी प्रेम की नगरी बसा। प्रेम की ज्योत से बाप बना ले, वर्षा प्रेम की फिर बरसा दे, ईर्ष्या द्वेष की आग बुझा दे, प्रेम के फूल खिला पुजारी प्रेम की नगरी बसा। प्रेम की भूमि प्रेम का मंदिर, प्रेम की देवी बैठी अंदर, प्रेम के पुष्प ये सुंदर सुंदर, मसरूर तू भेंट चढ़ा प्रेम की नगरी बसा, प्रेम की नगरी बसा।

लेता हूँ मसरूर कश्मीरी की एक और कविता जिसका शीर्षक है जाग संभल और सोच जरा। मूर्ख मन बहुत समझाया तू जिद से अपनी बाज ना आया, दिन रात भटकता रहकर भी क्या पाया क्या हाथ ही आया। जाग संभल और सोच जरा, क्या चाल चली है चौपट की, पासे बनाए वह भी नकली, खो बैठे हो हकीकत ही असली, सुलझे को फिर से सुलझाया। जाग संभल और सोच जरा, गैरों ही को है अपनाया, क्या सुंदर सपना दिखलाया, बुद्धि तक को है फुसलाया, अंधे कूप में लाके गिराया। जाग संभल और सोच जरा, जंगल में तो लाके बिठाया, पर काबू में कहां तू आया, बाजार जैसा शोर मचाया, तंग करके मार गिराया। जाग संभल और सोच जरा, राग द्वेष की ले सुरताल, वासना का फैलाया जाल, भूल गए हो देश और काल, मोह ममता ने यूं भरमाया। जाग संभल और सोच जरा, लोभ और मोह ने ऐसा जकड़ा, अहंकार ने कसकर पकड़ा, मूर्खता से बढ़कर क्या पाया, आजमोदा को फिर अजमाया। जाग संभल और सोच जरा, मसरूर जरा संभल तो जा, देख तू करने लगा है क्या, ना समझे को क्यों समझाया, केवल अपना समय गंवाया। जाग संभल और सोच जरा, जाग संभल और सोच जरा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 8। आज का वितस्ता गीतमाला आधारित है स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ पटवारी मसरूर कश्मीरी के काव्य संग्रह मन की मौज पर। लेता हूं अगली कविता मसरूर कश्मीरी की, जिसका शीर्षक है मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। कौन छुपा है तेरे अंदर जिसको देख न पाया है, मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। पट पट लिख लिख समय बिताया, हाथ तेरे कुछ ना आया। शब्द के उल्टे अर्थ बताकर सोया फितना ही जगाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं ने बरमाया है, असली मंजिल भूल गए हो, पुल पर डेरा जमाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। किसके हाथ को थाम लिया है, रहजन को रहबर बनाया। भटके राही होश में आओ, ये कैसा ढोंग रचाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। गलती का एहसास नहीं है, यूं ही शोर मचाया है। ठगनी माया ने देखो तो क्या क्या नाच नचाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। एन को गेन करने की खातिर तूने नुक्ता लगाया है। अपना लगाया नुक्ता मिटा दे, फिर एल को एन ही पाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। गली गली तो हांक लगाई, पर क्या खाक कमाया है। कूचे कूचे ठोकर खाकर फिर भी बाज न आया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। मसरूर अब भी सोच जरा तू, क्यों उलझे को और उलझाया। डोर तो हाथ से निकल चुकी है, कटी पतंग को उड़ाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है। मूर्ख मनवा सारा जीवन व्यर्थ ही तूने गवाया है।

पेश है मसरूर कश्मीरी की एक और कविता जिसका शीर्षक है ज्ञान है जीवन हमारा, ज्ञान ही पहचान है, ज्ञान बिना इंसान तो अनजान है नादान है। मुंह छोटा है बात बड़ी है, अनुभव झोली खाली पड़ी है, हाँ और नहीं में जंग छिड़ी है, निर्णय लीजिए शुभ घड़ी है, ज्ञान कथन कुछ शो है और ज्ञान का है दृढ़ निश्चय और सूरज सूरज कहते रहना अनुभव उषा का परिचय और जैसे बारात बिन दूल्हा के वैसे साधन के बिन है ज्ञान, कार्य बिना कारण ही कहां बोले जो वो है अनजान। जैसे दिया दिया कहने से कभी अंधेरी नहीं है छटती, वैसे ज्ञान ज्ञान कहने से अविद्या भी कहां है मिटती, काम क्रोध लोभ मोह चारों ही है नरक के द्वार, मन में रखकर इनसे प्यार कैसे करें ज्ञान प्रचार। सांप जो छोड़े केंचुली छोड़े ना देह का मान, मन में राग द्वेष रखकर मुंह से कहे ज्ञान विज्ञान, जहां भी कोलो फाल नहीं है इल्मो अमल में मेल नहीं है, वहां तिलु में तेल नहीं है ज्ञानी बनना खेल नहीं है। ब्रह्म सुख और विषयों के सुख में भूखेपन में और सीरी में मसरूर देख फर्क ही फर्क है रोशनी और अंधेरी में, ज्ञान है जीवन हमारा, ज्ञान ही पहचान है, ज्ञान बिना इंसान तो अनजान।

0: आप तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी, इनका अंत निकट है।
0: तथास्तु।

मसरूर कश्मीरी के काव्य संग्रह मन की मौज से ये है आखिरी कविता। मसरूर कश्मीरी लिखते हैं, वक्त कथनी का गया, आया है करनी का समय, उठ खड़े हो बेगरो तुम घर बसाने के लिए, हर तरफ जुल्मों सितम का तुम निशाना बन गए, और क्या बाकी रहा अब आजमाने के लिए, तुम तहफुज किस से मांगोगे, तुम्हारा कौन है, बाढ़ ही मसरूफ हो जब खेत खाने के लिए, फूट आपस की बनी सारी तबाही की वजह, तुम गले मिल जाओ बिछड़ू को गले मिलाने के लिए, भूले हो सूरत पे तुम सीरत को पहचाना नहीं, रहजनों को आज तक रहबर बनाने के लिए, लोग जागे तुमने चादर ओढ़ी आंखें मूंद ली, वक्त ने तुमको झंझोड़ा था जगाने के लिए, जागो माजी से सबक लो हाल की इसलाह करो, सोचो मुस्तकबिल की अब बिगड़ी बनाने के लिए, छोड़ औरों का भरोसा मसरूर बिगड़ी खुद बना, उठो हकदारों लड़ो तुम अपना हक पाने के लिए, उठो हकदारों लड़ो तुम अपना हक पाने के लिए। ये था आज का विदस्ता गीतमाला एपिसोड 8, जो आधारित था काव्य संग्रह मन की मौज पर। लेखक थे स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ पटवारी जी, जिनको मसरूर कश्मीरी के नाम से भी जाना जाता है। ये संस्करण प्रकाशित करवाया उनके सुपुत्र राजेंद्र पटवारी नाशाद ने। हम गौरवान्वित है ऐसे महान लेखक के लिखे कविताएं पढ़कर और हमें मार्गदर्शन करने के लिए। ये FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की ओर से एक सादर भेंट। इसके साथ ही अब मुझे दीजिए इजाजत, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वितस्ता गीतमाला कार्यक्रम पसंद आएगा। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे नंबर 705641301 पर। नंबर एक बार फिर 705641301 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 8, रिकॉर्ड एडिट निर्देशित व प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। आज का कार्यक्रम आधारित था काव्य संग्रह मन की मौज पर, लेखक स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ पटवारी मसरूर। आभार राजेंद्र पटवारी नशाद का हम तक ये काव्य संग्रह पहुंचाने के लिए। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त निया जैन, लेकर आई हूँ आपके लिए कहानियों का सिलसिला। आपके लिए जो कहानी लाई हूँ उस कहानी का शीर्षक है समय की कीमत। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नलायक था, काम चोर था। वो कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर से उधर घूमा करता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा घर के अंदर अलमारी में से एक घड़ी रखी हुई है, वो लेकर आओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम्हें इस घड़ी की कीमत पूछकर घर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने 1000 तो किसी ने 800। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी कीमत बताई। वो लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई है, किसी ने 500, किसी ने 1000 तो किसी ने 800। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, ठीक है, अब तुम घड़ी को अलमारी में फिर से रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे करवाना क्या चाह रहे हैं। वो दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछने लगा। और लोगों को लगा कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये लड़का घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने भी लगे। अब लड़का और भी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वो लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा ये जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। करोड़ों रुपए देकर भी तुम अपनी जिंदगी का एक पल भी वापस नहीं ला सकते हो।

उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर लड़के की आंखें खुल सी गईं, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव सा आ गया। फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई, और उस दिन के बाद से उस लड़के की जिंदगी बदल गई। कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन टाइम प्राइसलेस है, टाइम कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो। अगर एक बार तुम इसे गवा देते हो तो तुम इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। तो इसलिए अपने टाइम का सही उपयोग करो।

0: ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास कोई भी मौलिक कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर 7056413010 पर। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो मैं उस कहानी को अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक पहुंचाऊंगी। मिलती हूँ एक और कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए। नमस्कार।
1: तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हूँ। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा।

मद भर समापन झूला झूला हर कली सुख पल यहाँ।

आपने ट्यून किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपोई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। कार्यक्रम रंगमंच की ओर में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर सिर्फ रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर।

जानेमन, इस वीडियोस में हम फिल्में देख रहे हैं, नहीं रिव्यू करने के लिए नहीं, बल्कि एक्टिंग सीखने के लिए। और आज की फिल्म एक्ट्रेस के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहां ना कोई ड्रामेटिक एक्टिंग है ना कोई हीरोगिरी, सिर्फ दो एक्टर्स हैं और उनकी अंदर की भूख। सुधेंदु राय की फिल्म सौदागर, दो लीड एक्टर्स अमिताभ बच्चन साहब और नूतन जी, और ये फिल्म इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो पसंद किए जाए। ये फिल्म इनसे कहती है बस आप सच बोलो। अमिताभ बच्चन साहब का करेक्टर लाउड नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, हीरोइक बिल्कुल भी नहीं है, और यही सबसे बड़ा लेसन है। बच्चन साहब यहां डिजायर को चिल्ला के नहीं दिखाते, वो डिजायर को दबा के दिखाते हैं, उसे दबाकर रखते हैं। उनकी आवाज कंट्रोल्ड है, बॉडी स्टिफ है, मूवमेंट्स मिनिमल है, लेकिन अंदर अंदर एक भूख चल रही है। डिजायर को एक्टिंग में एक्सप्रेस करने का मतलब लाउड होना नहीं, कभी कभी डिजायर जितना शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। बच्चन साहब का करैक्टर प्यार नहीं करता, वो ओन करना चाहता है, और पोजीशन एक्टिंग में सबसे मुश्किल चीज होती है, क्योंकि पोजीशन डायलॉग्स या लाइन में नहीं होता, वो होता है नजरों में, पॉज में, कंट्रोल में। अगर आप पोजीशन को इमोशनली दिखा रहे हो तो आप गलत जा रहे हो। पोजीशन हमेशा इमोशन को दबा के खेला जाता है। अब बात करते हैं नूतन जी के काम की। एक बार बताऊं, ये रोल अगर किसी गलत एक्टर को दे दिया जाता ना तो वीक लग सकता था, लेकिन नूतन जी इसे वीक नहीं बनने देते। उनका करैक्टर कम बोलता है, ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करता, लेकिन वो जानती हैं कि वो क्या दे रही हैं और क्या खो रही हैं। उनकी स्ट्रेंथ नॉइज में नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ सेल्फ अवेयरनेस में है। स्ट्रॉन्ग फीमेल परफॉर्मेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता, कभी कभी रिएक्शन कम करना एक्टिंग को ज्यादा पावरफुल बना देता है। सौदागर का सबसे बड़ा लेसन यहीं से निकलता है। बच्चन साहब का करैक्टर कंट्रोल से खेलता है, नूतन जी का करैक्टर एक्सेप्टेंस से खेलता है। एक कुछ लेना चाहता है, दूसरा जानता है कि वो क्या दे रहा। बच्चन अंदर से दबा हुआ टेंशन, और नूतन जी अंदर से साफ क्लैरिटी, और दोनों बिना ड्रामेटिक सीन्स के फिल्म को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इस फिल्म में इंटिमेसी है लेकिन रोमांस नहीं है, और ये एक्टर्स के लिए बहुत एडवांस एरिया है। बच्चन साहब इंटिमेसी को कंट्रोल से खेलते हैं, नूतन इंटिमेसी को समझ के एक्सेप्ट करती है। अगर आप इंटिमेसी को रोमांस बना देते हो तो सौदागर जैसी फिल्म आपके हाथ से निकल सकती है, नहीं? अच्छा चलो अब बात करते हैं होमवर्क की। तो जरा सोचो, अगर आप किसी को सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहते हो क्योंकि आप अकेला महसूस करोगे, तो उस फीलिंग को लिखो, वही फीलिंग आपको बेटर एक्टर बनाएगी। इस फिल्म को बच्चन साहब के लिए देखो, नूतन जी के लिए देखो, और सबसे ज्यादा अपने लिए देखो। और हाँ, कमेंट में लिखो कि किस एक्टर का काम आपको ज्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जो डिस्टर्ब करे वही एक्टर को

حسن کی ہو مثال، ہو پونم کا چاند، زندگیوں کی ہو سحر، ہو ڈھلتی شام

उतरेगा नहीं। वैसे ही जैसे इन पानियों का बहाव रुकेगा नहीं, रुकेंगी नहीं हवाओं की सरगोशियां, रुकेंगी नहीं मौसमों की गर्माहट और ठंडक। बेशक तुम्हारी मोहब्बतों में शादाबियां हैं।

तन्हा, क्योंकि इन शामों से हम अब अलग हो चुके हैं। रोज देखता हूं बंद कमरे की खिड़की से थके हारे परिंदों की परवाज अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए, एक उम्मीद लिए कि सुबह की बरसात भिगोएगी हमारी जात को, हमारी मुस्कुराहटों को।

फुर्सत के लम्हों में क्या कभी ख्वाबों की ताबीर होगी? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि मेरे ख्वाब थे फीके फीके और तुमने रंग भर दिए। कैनवास पे उतारने की कोशिश भी की, पर रंग कच्चा था जो बिखर गया, लुप्त हो गया।

ये बेताबियां हैं मेरी उदासी का सबब। चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है दर्द की इंतहा, और दर्द उठता है दिल में शब रोज। सजदों में बोलते परिंदे मेरी खामोशी को बांप लेते हैं। ये नदी मेरे पैरों को छूकर गुजरती है, एहसास दिलाती है गुजरे हुए पलों का, मेरे अपने

आज इन बर्फीली घाटियों में एक जिंदगी खामोश है। यहां लम्हे चुप हैं, पर रातें हैं शादाब। सन्नाटा पसरा है, गुप अंधेरे भी यहां बोलते हैं। तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो, तोड़ दो अपनी चुप्पी, अपनी उदासी को। आज यहां इन बर्फीली हवाओं में पत्थर भी पिघलते हैं। यहां मेरे सब्र का पैमाना भी अब टूटा जा रहा है। कुछ कहो, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे हम आपसे इजाजत।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पना जिसे न आप बदल सकती हैं न मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ बंधी है। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। राजेश खन्ना नहीं रहे। 18 जुलाई 2012, राजेश खन्ना इस दुनिया फानी से कूच कर गए और कह गए, क्या फर्क है 70 साल और 6 मिनट में, मौत तो एक पल है। समान 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे देश में मातम की लहर दौड़ गई। राजेश खन्ना ने आशीर्वाद में अंतिम

अदा का जन्म 29 दिसंबर सन 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। राजेश का असली नाम जतिन खन्ना था और अपने अंकल के कहने पे जतिन राजेश खन्ना बन गए। एक टैलेंट हॉन्ट के दौरान राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। 10,000 में से सिर्फ 8 लड़के ही चुने गए, उनमें से एक नाम था राजेश खन्ना।

राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत सन 1966 में रिलीज के लिए तैयार हुई, लेकिन उनको जीपी सिप्पी ने राज फिल्म में ब्रेक दिया। इस अदाकार ने सन 1969 से 1975 तक फिल्म आराधना और फिल्म दो रास्ते से अपनी कामयाबी की शुरुआत की। इस दौरान 15 सुपरहिट फिल्में दी और उन्हें सुपरस्टार का खिताब मिला। फिल्म आराधना के अलावा सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद रोटी, खामोशी और आपकी कसम जैसी फिल्मों ने कमाई के नए रिकॉर्ड

राजेश खन्ना को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 14 बार नामांकन हुआ था और 3 बार ऐसे बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। राजेश खन्ना ने उस जमाने की लगभग हर हीरोइन के साथ काम किया, हेमा मालिनी, मुमताज, तनुजा, आशा पारेख, वहीद रहमान, लीना चंद्रावरकर और शर्मिला टैगोर। हेमा मालिनी के साथ राजेश खन्ना ने 15 फिल्मों में काम किया, जबकि एक्ट्रेस मुमताज के साथ 8 सुपरहिट फिल्मों में काम किया।

लड़कियों के बीच राजेश खन्ना की मकबूलियत इस कदर थी कि लड़कियां राजेश खन्ना के फोटो के साथ शादी करती थीं और खून से उन्हें खत लिखा करती थीं। राजेश खन्ना की कामयाबी में संगीतकार आरडी बर्मन और गुलकार किशोर कुमार का अहम योगदान रहा। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो आरडी बर्मन ने 40 फिल्मों में संगीत दिया।

एक्ट्रेस मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ सुपरहिट जोड़ी के अलावा राजेश खन्ना का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। टीना मुनीम से प्यार की खबर के अलावा अंजू महेंद्र से उनके अफेयर की भी काफी चर्चा हुई। इन चर्चाओं पर खुद ही रोक लग गई जब अचानक सन 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली और ट्विंकल और रिंकी खन्ना की

राजीव गांधी के कहने पर राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने कुछ चुनाव भी लड़े। लाल कृष्ण अडवाणी को चुनाव में उन्होंने कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को

दोस्तों आपको याद होगा, राजेश खन्ना ने छोटे पर्दे पर भी 2001 में अपने पराये और इत्तेफाक जैसे सीरियल में नजर आए और यह सिलसिला 2008 में सीरियल भाभी मां तक

राजेश खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री में काका के नाम से भी जाना जाता रहा। सुपरस्टार के दौरान राजेश खन्ना के लिए एक खास कहावत का इस्तेमाल हुआ करता था,

80 के दशक के अंत में राजेश की पहली पारी का अंत हुआ। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल रहीं।

सन 1994 में राजेश खन्ना ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। 1994 में खुदाई, 1999 में आ अब लौट चले। 2002 में क्या दिल ने कहा और सबसे अंत में वफा सिनेमा घरों में आई।

0: चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है बहेली कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: दोस्तों, राजेश खन्ना के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट और मासूमियत झलकती थी। राजेश आखिरी सांस तक खूब जिया और जी भर के जिया। उन्हें बेहतरीन और लजीज खाना पसंद था और कभी कभी किचन में जाके खुद खाना बनाते थे। मेहमान नवाजी सीखे तो राजेश खन्ना से। जज्बाती थे, छोटी छोटी बातों को दिल से लेते थे, किसी के दुख को देख नहीं सकते थे, इसलिए तो कहते थे I hate tears।

सन 1991 में 25 साल इंडस्ट्री में पूरा करने पर उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। इन 25 सालों में राजेश खन्ना इंडस्ट्री में वाहिद एक हीरो बने रहे, जिन्हें बतौर लीड रोल 106 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। और 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। सन 1966 और 1975 के दौरान राजेश खन्ना की 35 फिल्मों ने

फिल्म गीत गाया पत्थरों के ऑडिशन के दौरान जितेंद्र को राजेश खन्ना ने ही कुछ फिल्मी टिप्स दिए थे। इस तरह वी शांताराम ने जितेंद्र को पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों के लिए साइन किया। राजेश खन्ना ने एक ही फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के साथ काम किया। फिल्म थी जय शिव।

फिल्म आपकी कसम के दौरान सन 1974 में बीबीसी ने राजेश खन्ना पे एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जिसका टाइटल था बॉम्बे सुपरस्टार। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने कहा था कि महिलाएं राजेश खन्ना की दीवानी थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लंबी कतारों में घंटों तक खड़ी रहती थी।

संगीतकार प्यारेलाल राजेश खन्ना के साथ काम करने को लकी मानते थे। सन 1969 में फिल्म दो रास्ते और सन 1986 में फिल्म अमृत के लिए संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आम तौर पे राजेश खन्ना की फिल्मों में अशोक कुमार, सुजीत कुमार, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, असरानी बिंदु, विजय अरोड़ा, रुपेश कुमार, दीना पाठक और एके हंगल जैसे मंच कलाकार नजर आते थे। दोस्तों में शामिल रहे हैं राज बब्बर, जे ओम प्रकाश, प्रेम चोपड़ा, डी रामा नायडू और जितेंद्र। दोस्तों, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं।
1: अमीन साहब, आदाब।
2: आदाब भैया, आदाब।
1: आज का प्रोग्राम समर्पित है राजेश खन्ना के नाम। राजेश खन्ना साहब के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आपकी।
2: पहले तो मैं इतना बता दूं कि जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं चाहता था बहुत कि वहाँ स्मशान घाट पहुँचूं, लेकिन इत्तेफाक से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और मेरा बेटा गया मेरी तरफ से वहाँ, लेकिन अफसोस कि वो अंदर घुस ही नहीं पाया क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मैं क्या अर्ज करूं। और मतलब ये इससे पता चलता है कि राजेश खन्ना की यादें और उनकी उनका प्रेम अब तक लोगों के दिल में बसा हुआ है। मैं उसके बाद उनके चौथे पर गया था, कंडोलेंस मीटिंग थी और वहाँ कई लोगों से मुलाकात की, सबके चेहरे उदास थे। और एक गजब की चीज भी मैंने सुनी वहाँ, राजेश खन्ना की अपनी आवाज में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया कि किस तरह वो, ये पता नहीं किसका इंटरव्यू था, उसमें सिर्फ राजेश बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह वो स्टेज की दुनिया से आए और कैसे धीरे धीरे उन्होंने तरक्की की।
1: जी,
2: ये स्टेज पर काम करने वाली बात जो राजेश की थी, मेरा ख्याल है वो उनकी अदाकारी को संवारने निखारने में सबसे बड़ी बात थी। वो जब आए तो एक तैयार एक्टर थे, उनको एक्टिंग सीखनी नहीं पड़ी। हाँ, फिल्मों के लिए स्टेज और फिल्म में जो थोड़ा सा फर्क होता है वो एडजस्टमेंट उन्होंने पूरी तरह कर लिया और उसके बाद तो वो अपनी अदाओं से, अपनी खास हरकतों से, अपने खूबसूरत चेहरे से, अपनी मधुर आवाज से वो बस बढ़ते ही बढ़ते चले गए। मैंने उनकी कई फिल्मों में काम इसलिए किया ताकि मतलब इस तरह से कि मैं पब्लिसिस्ट उसका था रेडियो पर
1: जी,
2: और इस लिहाज से मेरी मुलाकात कई बार उनसे होती रही। एक इंटरव्यू सिर्फ मैंने उनका किया और वो कब, जब उनकी शादी होने वाली थी डिंपल कपाड़िया से
1: 1973 में,
2: खैर साल तो मैं भूल गया
1: जी,
2: था
1: जी।
2: और शादी से करीब चार रोज पहले मैं अपना टेप रिकॉर्डर लेकर उनके घर पहुंच गया और उनसे खूब बातें हुई और उन्होंने कहा मुझे कि जब मैंने पूछा कि शादी के बाद क्या डिंपल काम करेंगी फिल्मों में, तो कहने लगे नहीं, वो तो बस ये बॉबी आखिरी फिल्म है उनकी और उसके बाद वो कोई काम नहीं करेंगी क्योंकि पत्नी को घर में रहना और पति के साथ रहना ज्यादा अच्छा रहता है। मगर और उसके बाद वो रहने भी लगी उनके साथ, दो बेटियां भी पैदा हुई, मगर न जाने क्यों उसके बाद क्या हुआ कि बात थोड़ी बिगड़ी
1: जी।
2: और वही बात हुई जो कि बॉबी के गीत में बॉबी की हीरोइन डिंपल ने कहा था अपने हीरो ऋषि कपूर से कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं महके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो
1: जी।
2: और वो चली गई महके और दोनों अच्छे कलाकार अच्छे लोगों के बीच एक दीवार सी बन गई। इस दीवार की वजह से आखिर तक, यानी राजेश खन्ना के आखिरी दिनों तक ये दोनों अलग रहे और जब वो बहुत बीमार हुए, हॉस्पिटल में आना जाना शुरू हो गया, तो एक अच्छी पत्नी की तरह डिंपल फिर उनके पास चली गई और उनकी देखभाल भी की, उनके हॉस्पिटल ले जाने लाने में, वहां से लाने में उनका और उनके दामाद अक्षय का बहुत बड़ा हाथ था
1: जी।
2: और इस तरह से मामला चलता रहा कि आखिर सांस रुक गई और एक बहुत बड़ा कलाकार जो था वो खत्म हो गया।
1: अमीन साहब, जिन दिनों आप सिलोन में थे उस वक्त कोई ऐसी कोई याद उनके साथ जुड़ी हुई है?
2: याद तो फिल्म पब्लिसिटी के थ्रू रहा या फिर वैसे दोस्ती के जरिए और उनके दोस्तों से दोस्ती के जरिए, मसलन आरडी बर्मन बड़े दोस्त थे उनके, और
1: किशोर
2: आरडी
1: कुमार,
2: मेरे भी दोस्त थे भाई की तरह,
1: किशोर कुमार
2: किशोर कुमार
1: जी
2: भी।
1: जी जी
2: तो इन सब से मिलना और उनके बारे उनसे बात करना राजेश की, ये होता होता रहता था। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जो कि मेरे प्रोग्राम गीतमाला से ताल्लुक रखती है, और वो ये कि राजेश वैसे तो आते ही छाने लग गए थे और उनके गीतों ने भी धीरे धीरे काफी धूम मचानी शुरू कर दी थी, लेकिन आगे चलकर जब आराधना में उन्हें किशोर कुमार की आवाज मिली पहली बार, तब तक तो किशोर गाया करते थे सिर्फ अपने लिए या देवानंद के लिए, लेकिन आराधना में राजेश खन्ना के चेहरे पर जब किशोर कुमार की आवाज गूंजने लगी, उनके लब हिलने लगे किशोर की
1: जी
2: आवाज पर, तो ऐसा तहलका मचा कि बस करीब करीब सभी गीत टॉप हिट हो गए, और राजेश खन्ना न सिर्फ अपनी अदाकारी के जरिए बल्कि अपने खूबसूरत गीतों के जरिए भी लोगों के दिल में और गहरे उतरते चले गए।
1: कहा जाता है कि लड़कियां उनके फोटो से शादी करती थी, ऐसा।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगी कि कुंवारी लड़कियों की के तो वो फेवरेट थे ही, लेकिन बूढ़ी औरतों के यानी अम्मा नानियों का भी यह हाल था कि वो बड़ा प्यार करती थी, जब उनको अपना बेटा कहती थी, समझती थी और दुआएं करती थी उनके लिए, और छोटे बच्चे भी खूब मजा लेते थे उनकी अदाकारी का। तो वाकई वो पहले सुपरस्टार बने फिल्मी दुनिया के, यानी उनसे पहले तीन तो थे ही जो धूम मचा रहे थे,
1: जी
2: दिलीप और राज और देव, लेकिन उनके बाद जो सुपरस्टार कहलाए गए वो यही थे।
1: अमीन साहब, आखिरी दिनों में कभी आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला?
2: नहीं, मेरे मेरा तो ताल्लुक काफी वर्षों से बिल्कुल ही नहीं रहा था, बल्कि मेरा ही क्यों, किसी का भी ताल्लुक नहीं रहा था उनसे। मैंने देखा टीवी पर देखा कि एक बार वो किसी फंक्शन में आए थे और कुछ बोला था उन्होंने, और वो कविता जो उन्होंने दाग में बोली थी ना,
1: जी।
2: उसको एक नए अंदाज में जरा जोश के साथ पेश किया था, अमिताभ बच्चन कंपेयर कर रहे थे उस शो को,
1: जी।
2: लेकिन मैं कभी मिल नहीं पाया उनसे, बल्कि वो खुद अपने दोस्तों से अपने जान पहचान के लोगों से जरा दूर ही चले गए थे, एक हर्मिट से बन गए थे वो, और मुलाकातें लोगों की जरा कम ही होती थी, बीमार भी रहते थे, उनका उनका चेहरा आपने देखा ही होगा, दाढ़ी तो थी और गोया दाढ़ी छुपा रही थी उनके चेहरे का मुरझाना, तो बहुत बहुत बीमार बहुत बूढ़े से लगने लगे थे वो।
1: ये भी उन दिनों कहावत थी कि ऊपर आका और नीचे काका।
2: ये मैंने नहीं सुना, ये मैंने नहीं सुना,
1: जी।
2: लेकिन ये सही सही है कि सब उन्हें काका कहते थे, मैंने उन्हें काका नहीं कहा कभी क्योंकि वो थे मुझसे जरा छोटे
1: जी।
2: तो मैं राजेश जी का कहा करता था उनको।
1: अमीन साहब, किसी गाने के जरिए आप उनको याद करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के लिए?
2: जिंदगी का सफर है ये ऐसा सफर, कोई जाना नहीं कोई समझा नहीं, बहुत दिल को छू लेने वाला गाना था ये, और मेरा ख्याल है उन्हें उनकी याद में ये गाना जरूर बजाना चाहिए।
1: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: क्या आपको मालूम है राजेश खन्ना के आखिरी अल्फाज क्या थे?
1: किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, प्यार मुझे मिलता रहा, लेकिन उस प्यार को मैं कभी वापस लौटा नहीं पाया। लेकिन जो भी कहना चाहूंगा, जिन अल्फाजों में भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्हें दिल की सच्चाई होगी, मेरी ईमानदारी होगी, मेरा जमीर होगा। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि चलिए इस मानवी आपसे मुलाकात हुई। किसे अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, या पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपका एक हिस्सेदार मैं भी हूं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आपका ये प्यार था, अपना प्यार मौजूद हुए और इतनी भारी संख्या में, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और मेरा बहुत बहुत सलाम।
0: जाती तौर पे राजेश खन्ना से मेरी मुलाकात पहलगाम कश्मीर में हुई थी फिल्म रोटी की शूटिंग के दौरान, और मुझे आज भी याद है। कश्मीर के दिल फरीब और हसीन मनाजिर, खूबसूरती से वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। मेरी और उनकी बातचीत के दौरान वो अपने सिर को अपने ही अनोखे अंदाज में हिलाते रहे।
2: अच्छा, ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन।
0: और वही उनका अंदाज हमें उनकी फिल्मों में देखने को मिलता रहा।
2: कदमों के निहार है तो तुमको मुझसे प्यार है।

1 जुलाई 2012 दिन के 1:40 पे मौत ने दस्तक दी।

मौत आई राजेश को अपने साथ ले गई। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता, पर यह भी अपनी जगह सही है, आनंद मरते नहीं। पसीना मौत का माथे पे उतरा है, आई न लाओ हम अपनी आखिरी तस्वीर उतारेंगे।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुफ्तगू। और आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे नरेश शर्मा, और आज के मेहमान है रंगकर्मी हरियाणवी कलाकार शिव किरमच।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, एहसास अपनेपन का। और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। दोस्तों, आज हमारे साथ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो के बीच में हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणवी कला मंच के एक मंझे हुए कलाकार श्री शिव किरमच जी। शिव किरमच जी उभरते हुए विख्यात गायक सिद्धू किरमच के पिता हैं, जिनकी एक एल्बम अभी कुछ दिन पहले आप सुन रहे थे नैना नाम से। ये एल्बम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई है, और इन्हीं सिद्धू किरमच जी के पिता शिव किरमच, ये स्वयं भी एक कलाकार हैं, या यूं कहा जाए कि कलाकारों का परिवार है, ये आज हमारे साथ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो के बीच मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो शिव जी, रेडियो वितस्ता के इस स्टूडियो के बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: और हम सबकी खुशकिस्मती है कि हरियाणी रघुवंश को एक अलग पहचान देने वाले, जिन्होंने अपनी कला से हरियाणी रघुवंश पर एक अलग छाप छोड़ी है, वो कलाकार आज हमारे बीच में मौजूद है, जिनका शिव किरमच मैंने आपको नाम बताया। आइए जानते हैं इनकी जीवन के कुछ पहलू और इनके दिल की बात हम आज इन्हीं से जानेंगे। तो देखते हैं कि क्या है शिव किरमच जी की कहानी, सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। तो शिव जी, आप ये बताइए कि कला के क्षेत्र में आपका रुझान किन किन कलाओं में है?
2: जी मैं बताऊं, कला में रुझान मेरा बचपन से ही था, लेकिन मेरा शरीर दुबला पतला, कद मेरा छोटा, और मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स था कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। लेकिन जैसे जैसे मैं महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की ओर गया, मेरा ये रुझान उभरने लगा, निखरने लगा, और मैं कोशिश करने लगा।
1: मैं दोस्तों आपको ये बता दूं, जो दर्शक और श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, कि शिव किरमच जी अध्यापन कार्य से संबंधित रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं, और सेवानिवृत्त होने के पश्चात में अब ये अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने जा रहे हैं कला क्षेत्र के बीच में। जैसा कि इन्होंने बताया कि कद काठी छोटी होने की वजह से ये मतलब एकदम से समर्पित तो नहीं हो पाए, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा, जितना हमने इनको जाना और पहचाना है, आप इनके बारे में इतना जरूर कह सकते हैं कि ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाल। और देखते हैं कहां कहां इन्होंने बड़े धमाल मचाए हैं, और भविष्य में कला के प्रति इनकी क्या क्या और योजनाएं हैं।
2: जी मैं बताऊं सर आपको, मैं झिझकता था मंच पे जाते हुए भी। जैसे मैंने पहले एमए किया, उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड में मुझे थोड़ा थोड़ा सा अंदर मन में रहता था कि कुछ मैं मंच पे बोलूं, और मैं फिर कोशिश करने लगा, कभी चुटकुले सुना दिए, कभी कोई तुकबंदी सुना दी, और धीरे धीरे ये बात गंभीर रूप लेने लगी। और संयोग ही कहूँ, जैसे कॉलेज में जब मैं पढ़ता था करनाल में, तो बहुत सी फिल्में देखता था। फिल्में देखकर एक एक्टिंग का जुनून सवार होता था, मैं कैसे करूं, लेकिन मैं कर तो पता नहीं था, लेकिन मैं करने की कोशिश करता था। संयोग से 2009 में कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर नाम की एक संस्था खुली, और वहां मुझे एक छोटा सा करेक्टर करने का मौका मिला। नाटक था जिस लाहौर ने देखा, जम्याई ने। कुछ लोगों ने पसंद किया, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, और धीरे धीरे मैं 2009 से और आज तक कंटिन्यू नाटकों में काम कर रहा हूँ, चाहे वो सैया भाई कोतवाल हो या जिस लाहौर ने व्याख्या या खबरदार, यानी कि बहुत से नाटक, और इससे मेरा व्यक्तित्व भी निखरने लगा। जो लोग मुझे नहीं जानते थे, पहचानते थे, वो मुझे जानने लगे, पहचानने लगे।
1: वाह जी, तो ये तो इनकी कला का एक पहलू रहा है जो ये बता रही हैं, एक्टिंग जी। एक्टिंग के विषय में जी। इसके साथ साथ में संगीत में भी आपकी रुचि रही है क्या?
2: संगीत मैं गा नहीं सकता, लेकिन मैंने कुछ गीत लिखे हैं, हरियाणवी में भी लिखे, हिंदी में भी लिखे, तो ये रुचि भी तुकबंदी करने की। जैसे मैं बीए फाइनल में हुआ, फिर एमए में हुआ, तब मेरे अंदर था ये भी कि मैं कुछ कविताएं लिखूं। और आज आप सबके स्नेह से मेरा एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है जिसमें 50 कविताएं शामिल हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि जो जो बातें मैंने आज से 40 साल पहले सोची थी, मेरा काव्य संग्रह हो, मैं नाटकों में काम करूं, मैं फिल्मों में काम करूं, ये सब मेरे सपने धीरे धीरे प्रभु की कृपा से पूरे होते चले गए।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। हम ये भी जानना चाहेंगे, जो आपका अभी नाटक संग्रह प्रकाशित हुआ है, क्या आप हमारे श्रोताओं को अपने किसी कविता की चंद लाइनें सुनाना पसंद करेंगे?
2: बिल्कुल बिल्कुल सुना दूंगा, और ये मुझे पसंद भी है और मुंह जबानी मेरे याद भी है। जब मैं 92 में बीएड का विद्यार्थी था तब मैंने ये तुकबंदी की थी, वही कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ।
1: जी जी।
2: शीर्षक है संभलो संभलो, संभलो संभलो मेरे अजीज युवाओं, क्यों पांव कुल्हाड़ी मार रहे, पढ़कर बुरे व्यसनों में क्यों जीवन भाग उजाड़ रहे। आज पढ़ते ही नजर कुछ युवाओं पे मेरा मस्तक झुक जाता है, देख इनके दुष्कर्म दिल भी दहल जाता है। नैतिक पतन तो कर चुके, क्यों शारीरिक पतन भी करते हो, पीकर मदिरा लेकर ड्रग्स क्यों जीवन कलंकित करते हो। चरित्र का तो मैं नाम नहीं, क्यों सभ्यता को भी छोड़ दिया, माता पिता व गुरुजनों से तुमने क्यों नाता तोड़ लिया। कहता है शिव संभल जाओ, कहता है शिव संभल जाओ, वरना फिर पछताओगे, दो दिन की मौज है प्यारे, हरदम रोते पाओगे, हरदम रोते।
1: वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब,
2: धन्यवाद।
1: तो ये जो श्रोताओं, आप कलम का जौहर आपकी नजर के बीच में आया, शिव किरमिश जी का, समझते हैं आपके कलाकार अपने मन की भावनाओं को अपनी कलम के मार्फत हम सबके बीच में रखते हैं। और इन्होंने भी तो बहुत बात अच्छी बात कही है कि ये जो आजकल एक चलन सा चल पड़ा है नशों का, नशों के विरुद्ध आगाह किया है, बहुत सुंदर रूप से अपने संदेश को देने की इन्होंने कोशिश की है। समय रेडियो के ऊपर अक्सर कम होता है, हम प्रयास करेंगे कि कम समय के बीच में इनके विषय में ज्यादा से ज्यादा जितना जान पाएं उस जानकारी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा दें। तो एक पहलू और भी जिंदगी का होता है
2: जी।
1: वो होता है कि एक तो आपने बताया जिस तरह से कि अभी ड्रग्स की बात
2: जी,
1: यानी जिसको हम नशे के ऊपर कह सकते हैं
2: जी,
1: एक है प्यार मोहब्बत की बात
2: जी।
1: तो क्या मैं जान सकता हूं कि आपके साथ में क्या कोई ऐसी अनहोनी हुई?
2: अनहोनी की बताऊं, ये मन में ख्यालात तो सबके ही आते हैं। जब मैं जैसे 11वीं 12वीं का विद्यार्थी रहा, 13वीं 14वीं का विद्यार्थी रहा, मन में एक ऐसी इच्छा तो होती है इस तरह की एक कहानी बने। और कविताएं तभी लिखी जाती हैं, तभी मन के भाव भी व्यक्त हो पाते हैं। तो लेकिन मैं शक्ल सूरत का तो इतना सुंदर सा था नहीं, ऐसा ही था, काम चलाऊ सा था, तो फिर ये बस ख्यालों में ही ये पुलाव पकती रही। और हो सकता है जिंदगी में थोड़ा बहुत हुआ भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं।
1: नहीं, आप इसको स्पष्ट रूप में बताइए ना कि आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ। हो सकता है नहीं, जब आपके साथ में हुआ तब आप ये नहीं कह सकते कि हो सकता है, तब आप ये कहिए कि हाँ जिंदगी के बीच में मेरे साथ में प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला, कुछ सीढ़ियां आपने चढ़ी।
2: हाँ, चढ़ी होंगी, ये पढ़ते टाइम जरूर ऐसी।
1: क्या आज भी दिल धड़कता है?
2: हाँ, कल्पना में तो 100% धड़कता है, और तभी मैं ये जैसे गीत लिखता हूँ तो कल्पना भी तभी अच्छी कर पाता हूँ जब वो ख्याल आते हैं, इस तरह के कुछ जो अनुभव रहे हैं उन्हीं के आधार पे फिर कुछ पंक्तियाँ गढ़ी जाती हैं।
1: श्रोताओं, मेरी शुभकामनाएं शिव किरमिट जी के साथ में हैं, क्योंकि जो बातें अभी आप किरमिट जी के मुखरविंद से सुन रहे थे कि अभी भी इनका दिल किसी और के लिए धड़कता है, मैं समझता हूँ कि ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार सिर्फ आप लोग ही नहीं सुन रहे, शिव किरमिश जी के परिवार वाले भी सुन रहे हैं। और इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। सर, हम चलते हैं एक दूसरा रुख आपके जीवन का, जो दूसरा पहलू है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं
2: जी।
1: सुना है आप एक बहुत बहुरंगी बहुमुखी थिएटर के कलाकार भी है, क्या ये सच है?
2: जी, ये भी संयोग ही कहूं सर, 2009 में जैसे वहाँ हरियाणा कला परिषद का एक कार्यालय या एक यूं कहूँ एक थिएटर का एक ऑफिस वहाँ खुला, तो किसी ने, एक डायरेक्टर थे वीरेंद्र जी, तो वो कुछ चयन कर रहे थे, ये इसकी नायिका रहेगी, ये नायक रहेगा, और मैं वैसे ही दर्शकों में बैठा था। तो मेरी शक्ल सूरत देख के उन्होंने अंदाजा लगाया, अलीमुद्दीन एक चाय वाले का करेक्टर था, पूछने लगे भाई शिव भाई तू कर लेगा? अब मेरे मन में तो अंदर तड़प थी कि कुछ नया करूं, और मैंने कह दिया हाँ। वो तो मेरे मुझसे रहा नहीं था, लेकिन मैंने हाँ कर दी। फिर उन्होंने 5-6 महीने रिहर्सल करवाई, कहने लगे भाई शिव कुमार आपके बस की बात नहीं है, ये आप चले जाओ, आप तो शर्माते वो तो, यहाँ तो लड़कियों से मिलना भी पड़ेगा, गले भी लगना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये तो मुश्किल काम है, मैं वैसे भी अध्यापक हूँ और मुझे थोड़ा बुरा सा लगेगा, लोग भी क्या कहेंगे, लेकिन मेरे अंदर था। फिर मैंने कहा नहीं, मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगा। और सीखते सीखते वो पहला ही नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या, जमया ही नहीं, वो पूरे भारत में मंचित हुआ, और पूरा चाहे वो इलाहाबाद, उदयपुर, शिमला, चंडीगढ़, पटियाला और हरियाणा के शहर करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, और वो पूरा हिट होता चला गया। और मुझे भी फिर थोड़ा सा नाम, लोग कहने लगे भाई ये जचता है बंदा अलीमुद्दीन के किरदार में, और इस तरह मेरी जो भावनाएं हैं वो और उफनती गई, और मैं फिर अगले नाटक में, और आज कुरुक्षेत्र में मतलब मैं ये निसंकोच कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा नाटक मैंने किए हैं, अभिनय मैंने किया है।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप सुन रहे थे कि जो एक नाटक जिसका शीर्षक था जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति ने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ।
2: नहीं नहीं, सीखने का मतलब सर कि मैं अभिनय सीख जाऊंगा और इनसे भी मैं थोड़ा खुल के बात करने लगूंगा। पहले 1 साल तो मैं बहुत कम ही करता था, फिर वो मैंने रिकॉर्ड भी सारे तोड़े, फिर मैं बातें भी खूब करने लगा।
1: देखिए, ये सिर्फ जो बातचीत मैं आपसे कर रहा था, ये अपने श्रोताओं को जो बात बता रहा था वो सिर्फ एक मनोरंजन मात्र के लिए थी, वरना शिव किरमिच जी एक बहुत मर्यादित और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे मन में इनके लिए विशेष बहुत ही बहुत सम्मान है। आप हमारे स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों के लिए इतनी बातें कह रहे हैं। हम देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये प्रोग्राम जो हम आज यहाँ पर कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का है वो जरूर आपसे जानना चाहूँगा कि नाटक, आपने बताया कि नाटक जैसा कि जिस लाहौर में वेख्या वो जमया ही नहीं, आप ये बताइए कि नाटक ने आपके जीवन के बीच में क्या परिवर्तन ला के दिया है?
2: बहुत बड़ा परिवर्तन कहूँगा इन नाटकों से, क्योंकि मेरा जो व्यक्तित्व था वो ऐसा ही था, काम चलाओ, मुझे मतलब एक अपने अंदर ही एक कॉम्प्लेक्स रहता था, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं मंच पे नहीं बोल पाऊंगा, मेरी हिंदी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगी, इन सब बातों का निवारण हुआ नाटक से। और अब मैं सच बताऊं, कहीं गाड़ी में डीजल भी डलवा रहा होता हूं, लोग मुझे जानते हैं, सर आप तो वो नहीं हो कल टीवी पे आ रहे थे, मैंने कहा हाँ, सर आपका तो मैंने अखबार में फोटो देखा था, आप सैया भाई कोतवाल में कोतवाल बने हुए थे, और इतना अच्छा लगता है। और स्कूल की मैं बताऊं, चाहे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी या और जितने भी अधिकारी, वो सब मुझे मतलब एक बड़े रूप में देखते थे, भाई ये अध्यापक प्राध्यापक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक रंगमंच का खिलाड़ी भी है, ये मंच संचालन भी, क्योंकि मेरी झिझक वो सब टूट चुकी थी, इमरजेंसी में मैं मंच संचालन भी करता, मैं कविताएं भी सुनाता, चुटकुले भी सुनाता, सब काम मैं करने लगा, और मेरी वाहवाही होने लगी, चाहे वो जिला कुरुक्षेत्र हो या जिला जींद हो, हर जगह जाके नाटकों का खेलना, चुटकले। आपको बता दूं, एक बार कुरुक्षेत्र में ही पूरे हरियाणा के चुटकलों का एक कंपटीशन हुआ, प्रतियोगिता हुई, जिसमें ऊपर के 10 चुनने थे, और आप सबके स्नेह से उन ऊपर के 10 में मैं रहा, मुझे 5,000 रुपये का पुरस्कार और स्मृति चिन्ह वगैरह वो दिया गया, और एक बड़ा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें फिर मैंने अपने जोक्स, अपने चुटकुले हरियाणवी में सुनाए।
1: वाह, हरियाणवी कला के, हरियाणवी संस्कृति के, हरियाणवी परंपरा के पारंगत कलाकार श्री शिव किरमिश जी बता रहे थे अपने जीवन की कुछ झलकियां, तो इसके साथ साथ हम जैसा कि जानते भी हैं कि इनके पुत्र सिद्धू किरमिच जी जो विख्यात गायक हैं और आगे भी अभी उनकी यही परियोजनाएं हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज रेडियो वितस्ता के माध्यम से
2: जी।
1: आप नवोदित कलाकारों को, चाहे वो गायक हों, चाहे वो संगीतकार हों, चाहे वो थिएटर के कलाकार हों, या जो भी कला क्षेत्र से संबंधित हों, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं यही संदेश दूंगा, जो उभरते कलाकार हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हैं, वो संयम से और शिद्दत से काम करें और अपने आप को हवा में ना उड़ाएं कि दो दिन काम किया और मैं तो बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूंगा या मैं मुंबई फिल्मों में काम करने चला जाऊंगा। पहले उस बात को अच्छे से सीखें, अपने अनुभव एकत्रित करें और फिर कुछ आगे की सोचें। यूं नहीं भाई 5 दिन एक प्ले में, एक नाटक में काम किया, वो भी एक डंडा सा लेके खड़े हुए, और 7वें दिन कह रहे हैं मैं मुंबई का रुख कर रहा हूं, मैंने थिएटर तो बहुत कर लिया, या मैंने रियाज कभी किया नहीं, और गायकी में एक वैसे ही ये आजकल मशीनी युग है, वो अपनी ट्यूनिंग टैनिंग करके और अपना सुरताल सा थोड़ा ठीक कर लिया और कहने लगे हाँ मैं भी अच्छा गायक बन गया। इसके लिए जरूरी है रियाज करें, सीखें, अच्छे जो गायक हैं जो भारत में इतने बड़े बड़े नाम रहे हैं उनको सुने और फिर उनको अपने जीवन में उतारें और कोशिश ईमानदारी बरतें, मेहनत करें, बिना मेहनत के फल मिलने वाला नहीं है। आज जो ये मेरा इंटरव्यू हो रहा है ये इतनी जल्दी नहीं कि मैं कल रंगकर्मी बना और आज आपने मुझे रेडियो वितस्ता पे बुला लिया, इसके पीछे मेरे कम से कम 30 साल तो जरूर गए हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका और सभी सुनने वालों का कि मुझ जैसे छोटे से आदमी को आप सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: देखिए अभी जो आपने संदेश उभरते हुए कलाकारों को दिया
2: जी
1: कि जरा सी सफलता पाने पर हवा में ना उड़ने लग जाएं और अपने आप को मत भूलें, रियाज करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें और थोड़ी सफलताओं से बहुत ज्यादा बड़ी अभिमान में ना आए
2: जी।
1: आपकी एक बात से मुझे एक बात याद आ रही है कि कहते हैं कि बड़े कमजर्फ हैं ये गुब्बारे
2: जी
1: जो चंद सांसों में फूल जाते हैं।
2: वाह,
1: बड़े कमजर्फ हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं।
2: बहुत खूब।
1: तो मकसद ये है कहने का, आप कहीं पर भी रहिए, अपनी औकात को मत भूलिए, अपनी जमीन को मत भूलिए, अपने पांव को मत भूलिए, क्योंकि आखिर टिक कर तो जमीन पर ही रहना है। हमारे साथ आज शिव किरमिच जी जुड़े हैं और मैं इनसे, क्योंकि रेडियो के ऊपर हैं हम लोग, रेडियो वितस्ता पे इस प्रोग्राम से इनके साथ हमारी बातचीत हो रही है, मैं ये चाहूँगा सर आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा पसंदीदा गीत आपका जो आप कोई दिल के बहुत करीब हो, यूँ कह लीजिए कि आपके दिल की आवाज़ हो, कोई ऐसा गीत हमें बताइए, गुनगुना के सुनाइए, फिर हम वो गीत दर्शकों को आपकी फरमाइश पर आपकी तरफ से पेश करेंगे।
2: जी मैं गुनगुना तो नहीं सकता, लेकिन रेडियो
1: आप कहकर सुना दीजिए।
2: हाँ, कहकर, मुझे किशोर कुमार बहुत पसंद है
1: जी,
2: और किशोर कुमार के गाने बहुत, रेडियो इतना सुना है मैंने बहुत ज्यादा, और जो जिंदगी से जुड़ा होता है, जैसे मैं कई बार अपने आप को जोड़ देता था गीतों के साथ इस तरह का, तो किशोर का वैसे तो आप कोई भी बजा दो, लेकिन मुझे तो जैसे मेरी जिंदगी पे जो फिट बैठता है मैं कई बार सुन लेता हूँ, या तो मैं अपने दोस्त को 2 गाने बताऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा, वो उनमें से एक बजा देना सर। एक तो मेरी जिंदगी जैसे टूटी फूटी, भाई कुछ लोगों के पांव नहीं होते, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, अवतार फिल्म का गाना है सर, ये मेरे जिंदगी के बहुत करीब है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुप्तगु और आज चर्चा हो रही है शिव किरमच जी से, जो हरियाणवी कलाकार और रंगकर्मी हैं।
1: मेरे गांव में एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त, अब वो नहीं रहे दुनिया में, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरे क्लास फेलो थे वो, लेकिन वो मुझे चाहते थे कि मैं कुछ सीखता रहूं, ऊपर उठता रहूं। वो अब नहीं है, उनके लिए तो मैं अक्सर यही याराना फिल्म का तेरे जैसा यार कहा।
2: तो श्रोताओं, हम जहां पर आज शिव किरमच जी ने हरियाणा की संस्कृति को इतना कुछ दिया है, हम आज रेडियो विदस्ता की तरफ से शिव किरमच जी के लिए समर्पित करते हैं किशोर कुमार जी के ये गीत, जो इनके पसंदीदा गीत हैं। और इन्हीं गीतों के साथ में मैं आपको छोड़े चलता हूं रेडियो विदस्ता के इस परिवार से, और साथ में मैं धन्यवाद करता हूं उस शिव किरमच जी का कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, हमारे श्रोताओं से बातचीत की, कुछ अपने दिल की बातें कहीं, कुछ छुपा भी ली, जो हम मौका लगने के ऊपर फिर किसी और कार्यक्रम के बीच में इनसे ज़रूर सुनेंगे, कोशिश करेंगे इनके दिल तक दस्तक देने की, क्योंकि जब तक दिल तक दस्तक नहीं होती ना, तब तक बात पूरी निकल नहीं पाती। तो आज अब इस मोड़ के ऊपर इन गीतों के साथ ही अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा आपको किसी और प्रोग्राम के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का, धन्यवाद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुप्तगु। आज बात कर रहे थे नरेश शर्मा और आज के मेहमान थे शिव किरमच, जो रंगकर्मी है और हरियाणवी कलाकार है।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अम्बाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेरी निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सर्दी तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अंबाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है, घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स। दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें। क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
2: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदार 90.0 में।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए रेडियो दस्ता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली,

0: तो कौन मांगता?
1: जॉनी जॉनी जॉनी का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में

0: दिल की गहराइयों से जो आवाज आती है वो हर लफ्ज में एक कहानी सुनाती है। आपके एहसास, आपकी हर बात हम शुरू में पिरो कर लाते हैं आज। जी हाँ दोस्तों, ये है आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं FM 9.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। आज के इस खूबसूरत सफर में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूँ आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरे साथ आज के इस सफर में हैं
1: रेडियो वितस्ता के सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अन्नु।
0: और दोस्तों, आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं वो प्रोग्राम जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है।
1: शुक्रिया भारत जी। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ना, आपकी फरमाइश, ये नाम सुनते ही शायद आपको लगे कि ये बस एक प्रोग्राम है जहां आप गाने की फरमाइश भेजते हैं और हम वो गाना बजा देते हैं। लेकिन दोस्तों, सच कहूँ तो ये उससे कहीं बढ़कर है। यहाँ जो फरमाइश आती है उसके पीछे एक दिल होता है, एक कहानी होती है और एक एहसास होता है। हम बस उस गाने को नहीं चुनते, हम उस एहसास को महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा अनु। दोस्तों, ये प्रोग्राम असल में आपकी खुशियों का आईना है। जब आप हमें लिखते हैं, अपनी फरमाइश भेजते हैं, तो असल में आप हमें अपने उन लम्हों की झलक देते हैं जो आपके लिए बेहद खास है। कोई अपनी माँ को याद करता है, कोई अपने पुराने दोस्त को, कोई अपनी पहली मोहब्बत को, और हम उन सारे लम्हों को, उन सारी यादों को बड़े ही अदब और मोहब्बत के साथ सहेजते हैं।
1: और दोस्तों, यही तो सबसे खूबसूरत बात है इस प्रोग्राम की। हम सिर्फ रेडियो पर बैठे दो आवाजें नहीं है, हम वो जरिया है जिसके जरिए आप अपनी दिल की बात, अपने अनकहे लफ्जों को अपनों तक पहुंचाते हैं। हम आपकी उन बातों को सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं और फिर उन्हें आवाज देते हैं, ताकि वो बात सिर्फ आपके दिल में ना रहे बल्कि उस तक पहुंच जाए जिसके लिए वो कही गई है।
0: दोस्तों, कहते हैं कि वितस्ता की ये लहरें सदियों से बहती आई हैं, न कभी थकी है न कभी रुकी है। हर मौसम में, हर दौर में अपनी उसी रवानी के साथ आगे बढ़ती रही है, हर किनारे को अपने प्यार से सींचती रही है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही वादा है हमारा भी आपसे। ये प्रोग्राम भी वितस्ता की उन्हीं लहरों की तरह हमेशा चलता रहेगा, बिना थके, बिना रुके और बिना थमे। आपके एहसासों को साथ लेकर, आपकी खुशियों को शुरू में ढालते हुए, आपके हर लम्हे को अपने आगोश में समेटते हुए।
1: तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा लम्हा है, कोई ऐसा एहसास है जिसे आप किसी अपने तक पहुंचाना चाहते हैं, तो देर किस बात की, अपनी फरमाइश भेजिए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए और बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता के साथ। चलिए तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपनी बातों को सुरों में ढालने का। शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर का। आपकी फरमाइश लेती हूँ आज की पहली फरमाइश, जो आई है महेश नगर अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है मंगत राम, काका जगमाल सिंह, कुंदन लाल। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मुगले अजम से गीत। गीत के बोल है, जब प्यार किया तो डरना क्या। इस गीत को अपनी मीठी आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

तो श्रोताओं लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले श्रोता है हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दिल है बेताब से गीत। गीत के बोल है क्या तुम्हें पता है ए गुलशन। इस गीत को आवाज से सजाया है उदित नारायण ने। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि आप आने वाले दिनों में सिर्फ पुरानी हिंदी फिल्म के गीतों की ही फरमाइश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

इसी के साथ लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है अम्बाला कैंट हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता है अमिता बत्रा, शनाया और तनुष। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बॉबी से गीत। गीत के बोल है झूठ बोले कौआ काटे। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर जी और शैलेंद्र ने। अमिता बत्रा जी हमें बहुत सारी विशेष भेज रही हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच रेडियो उत्तस्ता की पूरी टीम की ओर से। और ये गीत वो डेडिकेट कर रही हैं हमारे रेडियो उत्तस्ता के सभी श्रोताओं को, ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान आए। आइए सुनते हैं इनका ये फरमाइशी गीत।

सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है धनोरी तेली वाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निसार सलमानी, ये सुनना चाहते हैं फिल्म दुनियादारी से गीत। गीत के बोल है नाव कागज का गहरा है पानी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने। निसार सलमानी के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। ये हमें प्यार भरा आदाब और नमस्कार भेज रहे हैं, हमारी ओर से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

लेती हूँ अगली फरमाइश जो आई है कुमार हेडा सहारनपुर से। भेजने वाले श्रोता है सैयद मसरूर, ये सुनना चाहते हैं फिल्म भरोसा से गीत। गीत के बोल है इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। सैयद मसरूर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं शाइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी।

सभी श्रोताओं के लिए अगली फरमाइश प्रस्तुत है और ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव जुगुड़ी जिला यमुनानगर से और भेजने वाले श्रोता हैं राम कुमार बांगड़। आप सभी का स्वागत है और इन्होंने ये फरमाइश हमें पहली बार भेजी है। राम कुमार बांगड़ के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं कमलेश, साहिल, राजविंदर, प्रक्षित और अंजलि। ये सुनना चाहते हैं फिल्म खतरों के खिलाड़ी से गीत। गीत के बोल है तुमसे बना मेरा जीवन। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोडवाल ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये मनपसंद नगमा।

इसी के साथ एक और फरमाइश जो आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधू, कबीर सिंह संधू, जसबीर सिंह संधू, वरनीत कौर संधू, पवनीत कौर संधू और सारा संधू परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म यादों की बारात से गीत। गीत के बोल है चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गीत को अपनी आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

आप सभी के लिए अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल। ये सुनना चाहते हैं फिल्म CID से गीत। गीत के बोल है लेके पहला पहला प्यार जादू नगरी से। इस गीत को आवाज दी है शमशाद बेगम ने। रवि कुमार राहुल के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। और इसके साथ ही रवि कुमार राहुल हमें लिखते हैं कि रेडियो विदस्ता को अगर हिंदी रेडियो के ऐप से सुना जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सजेशन हमने ली है और आप अब से रेडियो विदस्ता हिंदी रेडियो ऐप पर भी सुन सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखेंगे। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

0: इसी के साथ अगली फरमाइश जो आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, भेजने वाले श्रोता हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। और इसी के साथ मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर, ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म ज्वार भाटा से गीत। गीत के बोल है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। इस गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार और लता जी ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी।

0: हमारे पास अगली फरमाइश आई है गांव बेलगांव तहसील मेहकर जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र से। भेजे वाले श्रोता है सतीश वानखेड़े और उनका पूरा परिवार। इन्होंने हमें ये फरमाइश पहली बार भेजी है और साथ में ये कह रहे हैं कि रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हम सारे प्रसारित प्रोग्राम नियमित रूप से सुनते हैं। सभी कार्यक्रम सदाबहार और ज्ञानवर्धक होते हैं। सतीश वानखेड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमें फरमाइशें अपनी भेजते रहेंगे।
1: ये सुनना चाहते हैं फिल्म जीने की राह से गीत। गीत के बोल हैं आने से उसके आए बहार। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं इनका ये फरमाइशी गीत।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां हम आपकी फरमाइशों पर आपके पसंदीदा नगमे सुनाते हैं। अगर आप भी इस फरमाइशी कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अपनी किसी भी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत की, पंजाबी या हरियाणवी गीत की फरमाइश कर सकते हैं। आपको ये फरमाइश हमें भेजनी होगी हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। आपको अपना नाम लिखना होगा, जगह का नाम लिखना होगा और उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों का नाम लिखना होगा जो इस गीत को सुनना चाहते हैं। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। आइए लेते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश, जो हमारे पास आई है गांव जुगोड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है रणधीर बांगड़। ये सुनना चाहते हैं फिल्म खुदगर से गीत। गीत के बोल है लोग कहते हैं पीला चांद। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। रणधीर बांगड़ के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मनकीरत और मनराज। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी फरमाइशें हमें भेजने के लिए, और हम आपको इस मनमोहक गीत के साथ छोड़े चले जा रहे हैं और हमें आप दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में अगले शुक्रवार को दिन के 2 बजे। आप सभी जानते हैं ये कार्यक्रम शुक्रवार को दिन के 2 बजे आता है और इसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को दिन के 2 बजे होता है। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
1: इसी के साथ मुझे भी दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हमसफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: से तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
2: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आपने ट्यून किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और जरूरी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सीधे हमारे बच्चों के भविष्य और हमारे समाज की सेहत से जुड़ा है। वो है राष्ट्रीय पोषण माह 2026।
0: बिल्कुल अनु, यह इस साल का 9वां राष्ट्रीय पोषण माह है और इस बार इसकी थीम रखी गई है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। ये अभियान 9 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में चलाया जा रहा है।
1: और श्रोताओं, इसका राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से किया। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है।
0: अनु, सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में आता है, इस बार ये थीम ही क्यों चुनी गई है?
1: देखिए भारत जी, इसके पीछे एक बहुत साफ सोच है। पहले जब भी पोषण अभियान की बात होती थी तो लोग यही समझते थे कि यह सिर्फ सरकार का काम है, आंगनवाड़ी केंद्र चलाना, वहाँ खाना बंटवाना, यह सब सरकारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साफ संदेश दिया है कि बच्चों का सुपोषण और सर्वांगीण विकास केवल सरकार का नहीं बल्कि परिवार, समुदाय और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है।
0: यानी यह सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए थीम में हमारी शब्द जोड़ा गया, यह बताने के लिए कि आंगनवाड़ी केंद्र किसी दूर की सरकारी इमारत नहीं बल्कि हमारे अपने मोहल्ले, हमारे अपने गांव का हिस्सा है और इसे बेहतर बनाना हम सब का काम है।
0: तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई आंगनवाड़ी केंद्र है तो उससे अपनाइए, वहां जाइए, वहां की जरूरतों को समझिए, यही इस थीम का असली

0: आइए जानते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है आंगनवाड़ी के लिए। भारत जी, अब बात करते हैं इस पूरी मुहिम में सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी साझा तो है पर शुरुआत सरकार को ही करनी होती है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो 2018 में शुरू हुआ पोषण अभियान, जिससे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद है कुपोषण के मुद्दे को जड़ से, यानी एक जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर हल करना, गर्भवती महिला से लेकर छोटे बच्चे और किशोरियों तक।
0: और इसी के साथ चल रहा है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, जिसके तहत देश भर के करीब 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्र को हर साल करीब 40,000 की दर से सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।
1: इसका मतलब क्या है अनु, थोड़ा समझाइए हमारे श्रोताओं को।
0: इसका मतलब है बेहतर भवन, पीने के पानी की सुविधा, चालू हालत में शौचालय, हाथ धोने के लिए साबुन, बच्चों के खेलने और सीखने के लिए बेहतर माहौल। सरकार ने तो आंगनवाड़ी भवन निर्माण की लागत भी बढ़ाई है। पहले जो राशि 12,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दिया गया है, ताकि केंद्र मजबूत और सुविधाजनक बन सके।
1: और गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं ना?
0: जी हाँ, सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाली भोजन की गुणवत्ता बनी रहे। हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट को इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, और हर महीने एक जिला पोषण समिति की बैठक होती है, जिसमें प्रगति की समीक्षा होती है।
1: और डिजिटल निगरानी के लिए भी कुछ किया गया है?
0: बिल्कुल, पोषण ट्रैकर ऐप, यह मार्च 2021 से शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण है, जिसके जरिए हर आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों, बच्चों के वजन, लंबाई और पोषण स्थिति का रियल टाइम डेटा दर्ज होता है। आज इस पर करोड़ों लाभार्थी पंजीकृत है।
1: यानी सरकार अब सिर्फ योजना बनाकर नहीं छोड़ रही, बल्कि उसकी निगरानी और जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रही है।

0: आइए अब जानते हैं आंगनवाड़ी बच्चों के लिए कितनी सहयोगी हो सकती है। भारत जी, अब बात करते हैं कि यह सब बच्चों के लिए असल में कितना मायने रखता है।
1: देखिए अनु, आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ खाना बांटने की जगह नहीं है, ये 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और शुरुआती शिक्षा यानी प्रारंभिक बाल अवस्था विकास का सबसे पहला और सबसे अहम केंद्र है।
0: सही कहा, अगर किसी बच्चे को शुरुआती सालों में सही पोषण और देखभाल मिल जाए तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जीवन भर के लिए मजबूत नींव पर टिकता है। और यही वजह है कि कामकाजी महिलाओं के लिए भी सक्षम आंगनवाड़ी, क्रेच और सखी निवास जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, ताकि माँ काम पर जाए तो बच्चा सुरक्षित हाथों में रहे।
1: और किशोरियों के लिए भी तो अलग से ध्यान दिया जा रहा है अनु।
0: जी हाँ, पोषण 2.0 के तहत पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में लाखों किशोरियों की पहचान की गई है, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
1: यानी ये सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित नहीं बल्कि किशोर अवस्था तक फैला हुआ एक व्यापक ढांचा है।

0: आइए अब जानते हैं जन भागीदारी और समाज की भूमिका।
1: तो भारत जी, अब सवाल यह उठता है कि हम आम नागरिक इसमें क्या योगदान दे सकते हैं?
0: बहुत कुछ अनु। सबसे पहले तो अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़िए। अगर वहाँ पानी, शौचालय या साफ सफाई की कोई कमी दिखे तो उसे स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाइए। बच्चों को नियमित रूप से केंद्र भेजिए। पोषण संबंधी जानकारी अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ बांटिए।
1: और यही तो पूरी थीम का सार है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जब तक समुदाय खुद आगे बढ़कर इसे अपना नहीं मानेगा, तब तक सिर्फ सरकारी योजनाएं पूरा असर नहीं दिखा पाएंगी।
0: बिल्कुल सही, यही वजह है कि इस साल के अभियान में जन भागीदारी का केंद्र बिंदु बनाया गया है। रैली, गोद भराई, अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम, पोषण मेले, ये सब आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हर परिवार इस मुहिम से सीधे जुड़ सके।
1: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमने जाना कि राष्ट्रीय पोषण माह 2026 सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सरकार, समाज और परिवार मिलकर हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं।
0: बिल्कुल अनु, आंगनवाड़ी केंद्र मजबूत होगा तभी हमारा भविष्य यानी हमारे बच्चे मजबूत होंगे। और ये जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं, हम सब की है।
1: पोषण केवल भोजन से जुड़ा विषय नहीं है, यह हमारे देश के आने वाले भविष्य और मानव संसाधन के विकास से जुड़ा मुद्दा है।
0: बिल्कुल सही, FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं, अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े और वहां उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी लें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण में सहयोग करें। पोषण अभियान को एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर अपने परिवार और आसपास जागरूकता फैलाएं।
1: क्योंकि जब हर घर सही पोषण पाएगा तभी हमारा भारत कुपोषण मुक्त और सशक्त बन पाएगा।
2: पोषण से खुशहाल बने हर बच्चा।
0: इसी जानकारी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सुनते रहिए आपका अपना और मनपसंद रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, जो आपकी जिंदगी का हमसफर है और साथ ही आपके जीवन का प्रवाह भी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं हम विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहां तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहां बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र, 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: Amore mio, dove sai tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ। ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाई भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी अंक 3। आज के आमंत्रित अतिथि हैं जाने माने कवि डॉक्टर नफस अंबालवी। इनसे वार्ता करेंगे भरत सोपोरी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का। एक बार फिर फिजाओं में होगी शेरो शायरी, जिससे आपकी रूह भी ताजा हो जाएगी और आप आनंदित भी होंगे। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। किसी ने क्या खूब कहा है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए प्रभु हम पर मेहरबान है, बड़े नसीब वाले हैं जो आप आज हमारे मेहमान हैं। आज जो हमारे आमंत्रित मेहमान हैं, उनके सामने मेरा ये शेर पढ़ना बहुत ही छोटी सी बात है। आज के इस कार्यक्रम काव्य गोष्ठी में मैं बोलूंगा कम और हम आज के आमंत्रित मेहमान को सुनेंगे ज्यादा। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता गौरवान्वित है आज आपसे रूबरू कराते हुए अंबाला की शान, देश की आन बान और शान और अंतर्राष्ट्रीय कवि आदरणीय नफस अंबालवी जी। आपका स्वागत, अभिनंदन। आप यहाँ आज आए, हमारा स्टूडियो आज पावन हो गया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भारत सपोरी साहब, रेडियो वितस्ता के तमाम सुनने वालों को, डॉक्टर नफस अंबालवी का बहुत बहुत आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मुझे यहाँ बुलाकर जो आपने इज्जत अफजाई की है, मैं तो एक छोटा सा शायर हूँ और आपने इतना बड़ा खूबसूरत सा आपका स्टूडियो है, सो मुझे तो देखकर बड़ा अच्छा लगा। हालांकि आपसे मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है, लेकिन ये मैंने नहीं देखा था कि आपने इतना खूबसूरत स्टूडियो भी बनाया हुआ है। सो बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का और मुझे मौका देने का कि मैं आप सब के जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, उनसे रूबरू हो सकूं। बहुत मेहरबानी।
0: हमारी खुशनसीबी सर। नफस अंबालवी जी ने अंबाला को देश विदेश के मंचों पर सर्वोपरि रखा है। हमारे श्रोता और हम आपके बारे में आपकी जुबान से ही जानना चाहते हैं।
1: मेरे बारे में तो कुछ ऐसा खास जानने को है नहीं, जहां तक मुझे लगता है। हालांकि मैं बहुत से इंटरव्यूज में जाता रहता हूं, तो मुझे ये सवाल उठता है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने बारे में कुछ कहना। लेकिन हाँ, देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और अंबाला शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनीता कौशिक। मेरा नाम कमलेश कौशिक है, लेकिन अदब की दुनिया में लोग मुझे नफस अंबालवी के नाम से जानते हैं। और तमाम आपने हर जगह पढ़े होंगे, बहुत से मेरे शेर वायरल हैं, बहुत मकबूलियत भी मिली है, तो मैं उन खुशनसीबों में से हूँ जिन्हें जरूरत से ज्यादा मुझे लगता है कि शोहरत मिली है। तो हालांकि शायद मैं इसका उतना हकदार नहीं, मुझे कभी लगता, लेकिन फिर भी मैं एक डॉक्टर होने के नाते उर्दू का शायर भी हूँ और ये शायरी का शौक मुझे शुरू से है। तो हालांकि हुआ ये था कि जब ये जो हमारा पूरा प्रोफेशन है डॉक्टरी का, ये बहुत कुछ आपसे ले लेता है, देता बहुत कम है। और हुआ ये मेरे साथ भी कि मैंने जब 86 में पास आउट किया
0: जी,
1: तो हुआ ये, मैं मिशन हॉस्पिटल यहाँ पर हमारे अंबाला सिटी में बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल हुआ करता था उस जमाने में, तो वहां पर मैंने ज्वाइन कर लिया और वहां मैंने 1.5-2 साल मैंने वहां काम किया और उसके बाद मैं अंबाला शहर में ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो हुआ ये कि जो उससे पहले मैं शायरी किया करता था, फिर वो कहीं बीच में रह गई और वो एक डॉक्टरी जो है वो हावी हो गई उस पर। एक बड़ा प्रेशर था कि काम करना है, डॉक्टर बनना है, कामयाब होना है, तो वो कामयाबी का जो प्रेशर था उसमें बहुत सी चीजें छूट गई। उसमें मैं गाया करता था, गाना छूट गया। मैं हालांकि छोड़ना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर वही बात होती है कि हम कैसी जगह हमें रोपा जा रहा है और कैसी जगह हम रहते हैं, कैसा कैसे माहौल में रहते हैं। शायद कुछ माहौल ही ऐसा था कि बहुत एक दबाव बना हुआ था, या हमने कुछ देखा नहीं था, कुछ भी कह सकते हैं। एक
0: यानी कि जो आपके पैशन के साथ, जैसे आप कहते हैं कि आप गाते थे, और वो सारी चीजें रह के एक फोकस जो है वो आपकी
1: सिर्फ
0: प्रोफेशन पे गया,
1: मेरे प्रोफेशन पे रह गया। और मैं, मुझे ये बताते हुए भी बड़ी खुशी भी होती है, और मैं अपने शहर पर बड़ा नाजा महसूस करता हूँ कि लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं अपने कह लीजिए कि मैं अपने शहर का सबसे कामयाब डॉक्टरों में से एक गिना जाता रहा जब तक मैं काम करता रहा। अब तो खैर मैं ये बात भी 40 साल तकरीबन हो गए ना इस बात को
0: जी।
1: तो होने जा रहे हैं, समझ लीजिए 37 साल हो गए। तो एक बड़ा लंबा वक्त रहा, लोगों का प्यार बहुत मिला, और हमने भी उस प्यार को निभाया। हमने कभी बहुत बाजार नहीं समझा इस चीज को, आज भी नहीं समझता मैं तो। अब तो खैर ये सब हालात बदल चुके हैं।
0: मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बजाते खुद और जो मेरा परिवार है, हम आपके मुरीद हैं, जो हम आपकी शायरी पढ़ते हैं। आज मैं पहली बार ये जान रहा हूँ कि डॉक्टर कमलेश कौशिक
1: जी
0: हमारे सामने हैं, जिनको हमने शुरू से ही नफस अम्बालवी के नाम से जाना है। क्योंकि जब हम सब लोग अम्बाला के रहने वाले, जिस चीज में, जिस नाम में अम्बाला है, तो मुझे पूरी उम्मीद है हर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से, उस नाम से मोहब्बत करता है। तो आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपकी शिक्षा हुई है, वो आपने प्रोफेशन वाइज आप एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर रहते या डॉक्टर जब आप बने, आप उससे पहले ही लिखने की आपने शुरुआत करी थी?
1: हाँ, मैं लिखा करता था जब मैं कॉलेज में था, रोहतक में मैं पढ़ा करता था। तो मैं आपको इस बात को शुरू से अगर बताऊं तो मेरे पिताजी जो थे वो आर्मी में थे
0: जी,
1: वो मेजर थे, अफसर थे। तो हम लोगों का रहता था कि दो चार साल एक जगह, तो पोस्टिंग्स होती रहती थी। तो उसकी वजह ये हुई कि मेरी जो तालीम थी वो कुछ, मैंने अम्बाला हरगोलाल एक स्कूल है
0: सेकेंडरी स्कूल
1: जी, तो वो आज तो शायद वो

0: सकता हूँ कि अब वो मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उसकी तारीफ तो कर ही सकता हूँ कि वो मेरे जो गुजरे दिन हैं वो इस हद तक थे कि मैं जहाँ भी कहीं गाने के कंपटीशन होते थे, स्कूल में कोई प्रतियोगिताएं होती थी,
1: तो कॉलेज हर में जगह होती पे थी,
0: मैं हर जगह नंबर वन ही होता था, तो मुझसे बेहतर कोई था ही नहीं। तो ये एक बड़ी अच्छी सी, बड़ी खूबसूरत सी याद जो है मुझे है अपनी, और वो कैसेट में एक जगह रिकॉर्डेड है, लेकिन वो कैसेट को चलाने का कोई तरीका नहीं है और वो कैसेट भी मिक्स हो गया है कहीं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो मुझे मिल जाए तो मैं वो आवाज कहीं जो मैंने रिकॉर्ड करके कभी 1980 में
1: दोबारा सुन सके,
0: उसे सुन सकूं। तो इस तरह से मेरी जो तालीम है वो बहुत अलग अलग जगह पर हुई, और फिर मैंने डॉक्टरी में मैंने बीएमएस किया, और मेरी वाइफ भी जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं बीएमएस में, हम दोनों प्रैक्टिस करते रहे। तो ये मेरा जो एक सफर है तालीम का वो ये है।
1: हमने जो आपका व्यक्तित्व आज तक देखा है, सुना है, और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस व्यक्तित्व में बहुत सारी ऐसे परतें खुल रही हैं जिनके हम जानकार नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारे श्रोता है, खास करके अम्बाला के जो लोग हैं, वो आज नफस अम्बालवी साहब को बहुत अच्छे से जानेंगे। आपकी शायरी पे आते हैं, एक शेर है, उससे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। ये शेर हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख से सुना है। कृपया बताएं ये उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई कि आपके शेर हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंच गए।
0: ये शेर बहुत मकबूल हुआ और मेरे बहुत से शेर दूसरे भी बहुत सारे मकबूल हुए। आपको बेटियों का जब वो डॉटर्स डे आता है तो आपको मेरे शेर मिलेंगे वायरल। मदर्स डे आता है, मदर पर मेरे बहुत सारे, माँ के ऊपर बहुत से शेर हैं जो वो आपको वायरल मिलेंगे, तो वो लोग पोस्ट करते रहते हैं एक से दूसरे को। ये शायरी कुछ ऐसी चीज है, ये जब आप एक बार शेर सुना देते हैं फिर वो उसका हो जाता है जिसे समझ में आ गया
1: जी,
0: तो जिन्हें शौक है वो तो इसे पकड़ लेते हैं। अब ये जो शेर आपने जिक्र किया कि ये शेर यूं है कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। और इसका जो शेर नहीं सुना होगा बहुत से लोगों ने, ये तो सबने सुना हुआ है। अब वो शेर ये है कि मैं रुक गया तो बदन टूटने लगा मेरा, मैं रुक गया तो बदन टूटने लगा मेरा, अब एक सफर में हूं जब से थकान कुछ कम है।
1: क्या बात,
0: बहुत शुक्रिया। तो ये शेर दरअसल इतना मकबूल हुआ, इसे बहुत सी फिल्मी हस्तियों ने भी एक तरह से अपने, आजकल तो ट्विटर्स हैं, व्हाट्सएप हैं, हमारे उस जमाने में तो कुछ होता नहीं था, तो ये जब से ये सब सोशल मीडिया आया तो ये इसका नतीजा ये हुआ कि ये इतना वायरल होने लगा, तो ये कहीं प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचा होगा ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं मालूम कि वो किस सोर्स से उन्होंने लिया, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये शेर कहीं किसी उसमें थे वो, हाँ बच्चों को ये कुछ लेक्चर दे रहे थे शायद विज्ञान भवन में, वहां उन्होंने वो शेर कोट किया
1: जी।
0: तो मेरे पास, अच्छा फिर उन्होंने पहले, उससे पहले ये कोट ट्विटर किया, तो जब ट्विटर किया तो मेरे पास राजस्थान कोटा से मैसेज आया मेरे किसी फैन का, कहने लगे आपका शेर प्रधानमंत्री जी ने बोला। ये बात है करीब 5 साल पहले की, करीब 4.5 साल, हाँ 19 के जब इलेक्शन थे, जब इन्होंने वो किया था, स्ट्राइक किया था
1: जी
0: पाकिस्तान पर
1: जी।
0: तो उससे अगले दिन उन्होंने जो है ये ट्वीट किया शेर, तो मैंने कहा है ये कैसे हुआ, ये तो मैं तो मामूली सा शायर और ये शेर वहां कैसे पहुंच गया। तो फिर पता लगा कि उन्होंने वो शेर अगले दिन किसी रैली में भी बोला। फिर तो वो शेर जैसे प्रधानमंत्री जी के साथ, एक उनकी शख्सियत के साथ जुड़ता चला गया। भाई प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है ना, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारा देश तो बहुत महान देश।

0: मैं मानता हूं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर किसी अंबाला के किसी भी शख्स का कोई शेर कोट कर रहे हैं तो ये हम सबकी कामयाबी है,
1: हम सबके
0: जो आप सब लोग सुन भी रहे हैं, दो जो जितने दोस्त सुन रहे हैं, ये मैं आप सबको इसके लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये आप सब दोस्तों की और आप जैसे लोगों की जिन्होंने इसे मकबूल किया।
1: यहाँ पर सर मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक शायर कुछ भी लिखता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो शेर अगर हर एक व्यक्ति का हो जाता है तो वो हर एक व्यक्ति के दिल तक पहुंचता है। तो मैं चाहता हूं कि एक कविता यहां पर आपकी ओर से हमारे श्रोताओं के लिए हो जाए।
0: अच्छा हाँ जरूर, मैं आपको सुना देता हूं। क्या कुछ गाकर सुनाया जाए?
1: क्या बात है,
0: एक
1: क्या
0: दो,
1: बात?
0: एक दो चीजें गा,
1: क्या बात, तरन्नुम में हो जाए तो
0: तरन्नुम में सुना देता हूं।
1: बहुत अच्छी बात।
0: चलिए मतला समाज फरमाइए, मतला हाजिर करता हूं कि

0: अब न मैं हूं।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: बहुत शुक्रिया। और शेर सुने के इतना खुश भी न हो मुझको जलाने वाले, इतना खुश भी न हो मुझको जलाने वाले, देख जल कर भी अभी मुझ में धुआं बाकी
1: क्या बात है, क्या बात
0: है।
1: है, क्या बात है।

0: कुछ तो इस बार बहारों ने बिढ़ाए है सितम, उस पे ये जब्र के मौसम में खिजां बाकी है।
1: क्या बात,
0: उस पे ये जब्र के मौसम में खिजां बाकी है।

0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: क्या बात क्या बात। नफा संभालवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी, जो मैंने पहले कहा था कि आप आनंदित हो जाएंगे, वो आनंद जरूर आया होगा।
0: हालांकि मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं इन दिनों अब गाता नहीं हूं, तरन्नुम में पढ़ता ही नहीं, तहत में पढ़ता हूं, तो मेरा तहत जो है वही जो है वो मशहूर इतना है कि मुझे कभी गाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती।
1: मैं
0: तो आपके पास
1: सर, मैं मानता हूं कि ये आपका प्यार हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए, जो इस तरन्नुम में ये कविता, ये
0: आपके स्टूडियो का माहौल बहुत खूबसूरत है दरअसल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: इसलिए मैंने कहा चलिए कुछ तरन्नुम में पढ़ दे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: नफस अंबालवी साहब, आपकी प्रकाशित उर्दू शायरी संग्रह सराबों का सफर बहुत ही मकबूल रहा है, कृपया विस्तार में बताएं और इस संग्रह में एक कविता हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए। साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूंगा, सराबों का सफर, ये सराबों का जो मायने है वो क्या है?
0: सराबों का सफर मेरा एक शायरी का मजमुआ है, मजमुआ मतलब गजल संग्रह कह लीजिए, शायरी संग्रह कह लीजिए, तो क्योंकि इसमें नज़में भी हैं और कुछ मुतफर्रिक अशआर भी हैं, जो अलहदा अलहदा अशआर होते हैं उन्हें मुतफर्रिक अशआर कहते हैं
1: जी।
0: तो इसमें बहुत से मेरे ऐसे शेर हैं जो बस एक शेर ही है, दूसरा कुछ नहीं
1: जी,
0: तो वो भी इसमें शामिल है। और मेरी जो ये सराबों का सफर है, सराब कहते हैं जो मृग मरीची का एक, आपको रेगिस्तान के अंदर जो एक सामने चमक उठती है, जो पानी की तरह महसूस देती है, होता नहीं है पानी वहां, लेकिन वो पानी की तरह से ऐसा लगता है जैसे सामने पूरा दरिया समंदर झील है कोई। तो हिरन जो है वो उसके पीछे पीछे, प्यासा हिरन रेगिस्तान में उसके पीछे पीछे भागता रहता है कि वहां पानी है, वहां पानी है। तो हमारे जीवन में भी ये जो सराब है ये इसी तरह से फैले हुए हैं और सारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है, हम सराबों के पीछे भागते हुए हिरनों की तरह हैं
1: जी।
0: तो ये सराबों का सफर, वहीं से ये मेरे जहन में आया, और ये एक दरअसल एक नज्म है, और वो पूरी एक नज्म है सराबों का सफर। अगर आप कहेंगे तो मैं वो नज्म भी पढ़ दूंगा आपको, और एक मैं पहले एक आपको एक गजल, आपने मुझे कहा कि गजल एक सुनाऊं, तो मैं आपको एक गजल सुना देता हूं। ये मेरी किताब जो है इसका पहला ही, और ये भी आपको बताऊं कि ये जो है ये एकेडमी से अवॉर्डेड है
1: जी,
0: इसे बेस्ट बुक ऑफ द ईयर माना गया और ये बहुत मकबूल हुई। और इससे पहले मेरी एक किताब आई थी ख्वाबों के साए, वो ख्वाबों के साए मेरी कुछ ऐसी शायरी थी जो मेरी कॉलेज के जमाने में मैंने कभी लिखी थी, जब मुझे बहुत शायरी का पता भी नहीं था, शायरी के इनके बड़े उसूल होते हैं, कुछ कायदे कानून हैं, वो उसमें कहीं टूटे हुए थे और कुछ शेर बेवजन थे, कुछ बेबहर थे, तो इसलिए मैंने उसे कुछ बहुत तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि वो चीज वो है जो आपने कभी किस जमाने में लिखी थी जब मैं बहुत यंग था, 17-18 साल का, 20 साल का, वो जमाना था। अगर हम बेवजन शेर पढ़े तो वो बहुत बड़ा तहलका हो जाएगा कि भाई ये क्या पढ़ रहे हैं नफस अंबालवी
1: जी।
0: लेकिन फिर भी मैंने उसमें रखे हुए हैं, वो वैसे ही पढ़े हैं, मैंने उन्हें दुरुस्त भी नहीं किया, तो वो भी एक मेरी किताब है जो कि मेरे लिए बड़ा मील का पत्थर साबित हुई।
1: वहीं से ये शुरुआत तो वहीं से हुई है।
0: मील का पत्थर मेरी सबसे पहली नज्म थी जिसे मैंने RKSD कॉलेज कैथल में 85 या 84 में मैंने कभी सुनाया था, और उसे जो है अवार्ड मिले थे, वो फर्स्ट आई, और उसके बाद वो कई जगह पढ़ी गई, तो वो भी एक नज्म, वो भी है मील का पत्थर
1: जी।
0: तो फिर कभी सही मैं आपको एक गजल हाजिर कर देता हूँ, ये मेरी किताब की पहली ही गजल है और बहुत लोगों ने सुनी हुई है, बड़ी मकबूल है
1: जी।
0: तो हाजिर ये करता हूँ कि मतला यूं है कि घर किसी का भी हो जलता नहीं देखा जाता, घर किसी का भी हो जलता नहीं देखा जाता, हमसे चुप रह के तमाशा नहीं देखा जाता, घर किसी का भी हो जलता नहीं देखा जाता, हमसे चुप रह के तमाशा नहीं देखा जाता। तेरी अजमत है, तू चाहे तो समंदर दे दे, ये आपकी नजर है शेर। तेरी अजमत है, तू चाहे तो समंदर दे दे, मांगने वाले का कासा नहीं देखा जाता।
1: क्या बात है,
0: तेरी अजमत है, बहुत शुक्रिया। तेरी अजमत है, तू चाहे तो समंदर दे दे, मांगने वाले का कासा नहीं देखा जाता। और जब से सहरा का सफर काट के घर लौटा हूं, सहरा रेगिस्तान,
1: रेगिस्तान,
0: जब से सहरा का सफर काट के घर लौटा हूं, मुझसे कोई भी हो प्यासा नहीं देखा जाता।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: जब से सहरा का सफर काट के घर लौटा हूं, मुझसे कोई भी हो प्यासा नहीं देखा जाता। ये इबादत है, इबादत में सियासत कैसी?
1: ये इबादत है,
0: ये इबादत है,
1: इबादत,
0: इबादत में सियासत कैसी? इसमें काबा या कलीसा नहीं देखा जाता।
1: क्या बात है,
0: कलीसा कहते हैं चर्च को
1: जी।
0: ये इबादत है, इबादत में सियासत कैसी? इसमें काबा या कलीसा नहीं देखा जाता। और मेरे लहजे पे न जा, कौल का मफहूम समझ। मेरे लहजे पे न जा, कौल का मफहूम समझ। बात सच्ची हो तो लहजा नहीं देखा जाता।
1: बहुत खूब,
0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत खूब।
0: मेरे लहजे पे न जा, कौल का मफहूम समझ। बात सच्ची हो तो लहजा नहीं देखा जाता। और लोग मीनार के गुंबद पे नजर रखते हैं, लोग देखते हैं कि आहा सपोरी साहब कहां पहुंच गए, क्या कर रहे हैं
1: जी,
0: ऐसा बोलते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी,
0: अरे नफो संभालवी कहां पहुंच गए, क्या कर रहे हैं। तो उसी पर ये शेर है कि लोग मीनार के गुंबद पे नजर रखते हैं, लोग मीनार के गुंबद पे नजर रखते हैं, उसकी बुनियाद का नक्शा नहीं देखा जाता।
1: बहुत सच्चाई है।
0: हाँ, तो बहुत शुक्रिया। लोग मीनार के गुंबद पे नजर रखते हैं, उसकी बुनियाद का नक्शा नहीं देखा जाता। और अक्स उभरेगा नफस, गर्द हटा दे पहले, अक्स उभरेगा नफस, गर्द हटा दे पहले, धुंधले आईने में चेहरा नहीं देखा जाता।
1: क्या बात, क्या बात,
0: बहुत शुक्रिया। अक्स उभरेगा नफस, गर्द हटा दे पहले, धुंधले आईने में चेहरा नहीं देखा जाता। बहुत शुक्रिया,
1: बहुत खूब, बहुत खूब। आज जिस रवा में मैं गुजर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा है कि एक अंतरराष्ट्रीय कवि, जो एक डॉक्टर भी है, वो हमारे साथ हैं, हमारे सामने हैं। और जैसे हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुनेंगे, जो अनुभव वो महसूस करेंगे, मैं उस अनुभव में इस समय तैर भी रहा हूं और बहुत आनंदित भी हो रहा हूं।
0: आपकी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपकी ये सराबू का सफर हरियाणा उर्दू एकेडमी से भी पुरस्कृत है, और देश के जाने माने उच्च कवियों ने भी सराबों का सफर पढ़ने के बाद अपने सुनहरे अल्फाज से नवाजा है। हमारे देश के माने हुए कवि मुनव्वर राणा साहब कोलकाता से सराबों का सफर पर लिखते हैं, नफस अंबालवी की शख्सियत में लखनवी और लाहौरी नमक का इम्तिजाज है। अच्छे शेर की तारीफ में शफाप और मुखलिसाना रोए का अक्स शामिल रहता है। पहली बार उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे हम जमानाए कदीम की उर्दू तहजीब से मिल रहे हैं। शख्सियत के रखरखाव का ये मौसम अब खलखल ही देखने को मिलता है,
0: कहीं कहीं देखने को मिलता है खलखल।
1: लिखते हैं, नफस अंबालवी को पढ़ते हुए मुझे पंजाब की सरसब्जो शादाब और उजली सुबह का एहसास होता है
0: जी।
1: दिल्ली और लखनऊ की जबां और मुहावरों को हरियाणा में बैठे हुए शायर ने जिस एहतराम और जिम्मेदारी से भरता है, वो काबिले सत्ताईश है। क्या बात है सर, जब इतने बड़े शायर आपकी शान में लिखते हैं, क्या मायने रखता है ये आपके लिए?
0: ये क्या बताऊं मैं आपको कि क्या मायने रखता है। सच में कई, देखिए सुपो भाई, के हमारे ना कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जिन्हें हम बड़ा कीमती मानते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बयान करने को कहें तो ये जैसे खुशबू होती है
1: जी,
0: आप उसे हाथ से छू नहीं सकते,
1: महसूस कर सकते हैं जी।
0: तो ये जो एहसासात होते हैं ये खुशबू की तरह से होते हैं, हम इन्हें छू नहीं सकते, इन्हें लफ्ज भी नहीं दे सकते कि क्या लफ्ज दिए जाए। लेकिन मुनव्वर राना साहब तो बहुत बड़े अजीम अदीब हैं, सब जानते हैं दुनिया में कि उनका बहुत बड़ा नाम है, उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। मुझे एक बहुत बड़ा इनाम उन्होंने दिया था, मैंने एक शेर लिखा, वो मैं शेर आपको पहले सुनाता हूँ कि वो शेर मेरी किताब के ऊपर ये लिखा हुआ है
1: जी जी।
0: अब वो शेर ये है कि मेरे ख्याल की परवाज बस तुम्हीं तक थी, मेरे ख्याल की परवाज, बारीक शेर हाँ, मेरे ख्याल की परवाज बस तुम्हीं तक थी, फिर उसके बाद मुझे कोई आसमान ना मिला।
1: यानी आसमान से भी ऊपर, बहुत खूब बहुत खूब।
0: तो ये आप देखें कि इसकी बारीकी में जितना आप जाएंगे, इसे जितनी बार पढ़ेंगे, ये मैं किताब आपको देता हूं और ये किताब आप पढ़ें और इस शेर को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार इसके आपको नए मानी समझ में आएंगे।
1: एक बार फिर चाहूंगा कि आप ये पढ़ें
0: जी। मेरे ख्याल की परवाज बस तुम ही तक थी, फिर उसके बाद मुझे कोई आसमान ना मिला।
1: क्या बात।
0: जब ये शेर मैंने उन्हें भेजा तो उनका फौरन फोन आया मेरे पास, कहने लगे नफस मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा जी कहिए। कहने लगे ये जो शेर तुमने भेजा है ना
1: जी,
0: मैं इसकी दाद नहीं दूंगा।
1: अच्छा।
0: बस मैं एक बात कहूंगा तुम्हें
1: जी
0: कि जो मेरे पास इससे बड़ी दाद है भी नहीं कोई। तो वो ये वो लफ्ज ये हैं कि काश ये शेर मैंने कहा होता।
1: क्या बात है।
0: तो ये मुझे मुनव्वर राना साहब का सबसे बड़ा जो इनाम उन्होंने मुझे दिया, वो लफ्ज आज तक मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग पर कायम है कि इतना बड़ा अजीम शायर और वो मुझे ये बात कह रहा है कि काश ये शेर मैंने कहा होता तो मुझे इससे बड़ा इनाम मुझे नहीं लगता कोई मिला होगा। और ये जो मुझे महसूस होता है, एक मर्तबा का और मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग पटियाला में, एक बहुत बड़ा मुशायरा था वसीम बरेलवी साहब, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाम उनकी अल्लाह और क्या करें परवरदिगार, हमारे यहाँ अल्लाह और परवरदिगार को अलग अलग मानते हैं, तो मैं नहीं मानता। मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ईश्वर वाहेगुरु सब एक है, कोई अलग अलग कोई
1: नहीं है,
0: इनकी कोई वजूद नहीं है
1: जी।
0: तो एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, वही सबको देखने सुनने वाला, हम सब उसी का हिस्सा है, जितने भी मजहब हैं सब उसी से निकले हैं और सब उसी में समा जाएंगे,
1: एक ही रास्ता है।
0: हाँ। तो मैं वहां था, हम लोग मुशायरा हुआ, बड़ा कामयाब मुशायरा हुआ, वसीम बरेलवी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, तो मैंने भी वहाँ एक अपनी गजल सुनाई और फिर वहाँ हम लोग खाना खा रहे थे, तो जैसे प्रेस मीडिया के लोग आ जाते हैं तो मैं और वसीम बरेलवी साहब साथ साथ बैठे थे, कुछ एक दो शायर और भी थे, काफी वसीम बरेलवी साहब के आसपास बड़ा मजमा होता है हमेशा ही, तो हम लोगों के लिए भी ये बड़ी फख्र की बात है कि मुझे बहुत अजीम शख्सियात के साथ बहुत ही करीबी मेरी कुर्बतें रही हैं, जिसमें मुजफ्फर अजमी साहब जैसे लोग हैं,
1: हाँ,
0: बहुत राहत इंदौरी साहब और तमाम जितनी भी आप सब लोगों के नाम, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े शायर हैं, निदा फाजली साहब, हाँ कितना बड़ा नाम है, मैं उनके साथ बड़ा, मेरी बहुत सी तस्वीरें हैं। तो वहां खाना खा रहे थे तो वो कहने लगे कि, तो एक यंग से पत्रकार ने एक सवाल किया कि अपनी तरफ से, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया, कहने लगे कि ये देखिए आजकल शायरी, आप वसीम साहब क्या समझते हैं कि शायरी जो है ये दिनों दिन खत्म क्यों होती जा रही है।
1: अच्छा।
0: अब वो बात नहीं रही, तो वसीम साहब ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया उसका, वो कहने लगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, इतनी अच्छी शायरी आजकल हो रही है, हालांकि शायरी जो है ये वक्त के हिसाब से अपने रंग बदलती रहती है, लेकिन आज देखिए ये डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी शायरी पढ़ी नफा संभालवी साहब ने
1: जी,
0: हैं, मुझे तो नहीं लगता इनको सुनकर के शायरी खत्म हो रही। आप देखें कि मैं ऐसे ऐसे रह गया, धक से मेरा दिल रह गया, ये कौन बोल रहा है? ये वसीम बरेलवी
1: जो हमारे देश के
0: प्रोफेसर वसीम बरेलवी, इतना बड़ा नाम, उनसे बड़ा नाम तो आज एक बशीर बद्र साहब हैं। बशीर बद्र साहब के साथ भी मेरी बड़ी कुर्बतें रही
1: जी, उन्होंने भी तो, शराबों के सफर पर लिखा है
0: जी, उन्होंने भी इसमें लिखा हुआ मेरी किताब में, बशीर बद्र साहब ने, उनके साथ तो मेरे बड़े अच्छे वो रहे, उनसे तो मेरी घंटों घंटों तक बातचीत होती थी और मैं उनको कभी शेर नहीं सुनाता था, वो मुझे जो है अपनी शायरी सुनाते रहते थे। और फिर वो उनकी धर्मपत्नी आती थी, वो कहती थी कि भाई बहुत हो गया, अब तो बंद कर दो है क्या अब उनके, तो फिर वो फोन लेके मुझे कहती थी कि आजकल इनको थोड़ा ऐसा होता जा रहा है कि इनको पता नहीं लगता कि कितनी देर से बोल रहे हैं, और जब फोन रखेंगे तो इन्हें नाम भी याद नहीं रहते कि किससे बात हुई। तो मैंने कहा देखिए, तो अब वो बड़े तो उसमें हैं।
1: हम उस पत्रकार पे वापस आते हैं, तो उनका फिर क्या उसके बारे में रिएक्शन था जब वसीम बरेलवी साहब ने ये कहा कि शायरी तो जैसे डॉक्टर साहब ने पढ़ी तो वो तो इससे भी अच्छी है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि शायरी खत्म हो रही है?
0: तो ये एक बड़े कमाल की बात थी कि मैंने कहा ना कि इनामात कैसे मिलते हैं हमें, ठीक है मुझे अकेडमी से बहुत अच्छे अच्छे बड़े इनामात मिले हैं, मुझे 100-150 के करीब, 125 तो होंगे
1: ही, पर इनसे बड़ा इनाम शायद ही कोई हो सकता है।
0: इनसे बड़ा इनाम तो कोई एकेडमी भी नहीं दे सकती,
1: नहीं दे सकती।
0: जो हमें जो वसीम बरेलवी साहब ने मुझे दिया, या मुजफ्फर रजमी साहब ने मुझे दिया, मुजफ्फर रजमी साहब वो नाम है जिनका एक शेर बड़ा मकबूल है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। कितना मशहूर शेर है ना?
1: हाँ जी जी।
0: और ये शेर जो है मुझे ये मुजफ्फर रजमी साहब का, मुजफ्फर रजमी साहब के साथ मेरे इतने गहरे ताल्लुक आते, वो अक्सर मेरे घर आते भी थे, हम लोग इकट्ठे मुशायरों में जाते थे, तो इस मजमुए को इस शक्ल में पहुंचाने में उनकी भी बड़ी इमदाद है, और उन्होंने मेरा बड़ी रहनुमाई की है, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। मरहूम हैं अब तो, खैर वो उनका इंतकाल हो गया, और जब उनकी मृत्यु हुई तो आप देखें कि मुझे दूरदर्शन से फोन आया
1: जी,
0: कहने लगे कि आपका हमें नंबर दिया है उनके घर से।
1: अच्छा।
0: हमने कहा था कि हमें कोई उनका दोस्त, कोई मित्र, कोई ऐसा नजदीकी जो उनकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ बात कर सकता हो, तो हम चाहते हैं उन पर एक प्रोग्राम करें उनके जाने के बाद, तो अब वो नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और हमें आप उसमें शामिल हों। तो मेरा फिर वो इंटरव्यू हुआ वहां और मैं गया, तो मैंने कहा मगर ये कैसे? कहने लगे जी हमने उनसे ये पूछा था कि किताबों पर बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें निजी जिंदगी के बारे में कैसे पता लगे, उनकी कोई ऐसी बातें जो वो करते थे या जो कुछ बातें थी। तो दरअसल मुजफ्फर रजमी साहब मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन हम दोनों के बीच में बहुत गहरा दोस्ताना रिश्ता था, और जैसे यारों में बात होती है वैसे हमारे दरमियान बात होती थी,
1: दिल की बात।
0: हाँ, वो बिल्कुल जैसे हम पक्के यार थे, मतलब ये हालांकि मेरे नाम पर कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो इसलिए कि क्योंकि वो उम्र में हमसे बहुत बड़े थे, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा अपने बहुत नजदीकी और गहरे दोस्त की तरह से उस नजर से देखा, तो ये उनकी अजमतें हैं भाई, बड़े लोग।
1: ये भी इनामों में हम गिनेंगे,
0: ये बहुत बड़े इनाम
1: है, बड़ा इनाम।
0: हाँ, क्या क्या इनाम गिना सकते हैं, बहुत सारे हैं, ये किससे तो जितने आप कहें उतने सुनाता रहा, आपका प्रोग्राम खत्म ही नहीं होगा।
1: नहीं नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा, और दिल से वो प्रोग्राम सुनेंगे। हम थोड़ा सा विराम देते हैं संगीत की ओर।
0: हाँ जरूर।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आप गायक भी रहे हैं, और तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप संगीत से जुदा नहीं है, तो कोई ऐसा गाना जो आपका बहुत पसंदीदा हो, जो हम आपको भी सुनाए और हम अपने श्रोताओं को भी सुनाए।
0: देखिए, मैं तो गाता रहा हूँ, मेरे बहुत महबूब जो गायक रहे हैं उनमें किशोरदा, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी
1: जी,
0: और लता मंगेशकर बहुत से अच्छे हैं, शमशाद बेगम, मैं उनके बड़े वो सुनता रहा हूँ। तो मैं गानों का मेरी बड़ी लंबी फहरिस्त है, तो साहिर उल ध्यान भी वैसे मेरे पसंदीदा शायरों में से एक हैं। साहिरुल ध्यानवी इतना बड़ा नाम, वो एक इकलौता ऐसा शख्स, एक ऐसा शायर हिंदुस्तान का है जो फिल्मों के लिए लिखा जरूर, लेकिन उन्होंने कभी एक लफ्ज का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो बदला नहीं। जैसे फिल्म में तो सब कुछ बदल जाता है,
1: बट सब बदल देते हैं। उन्होंने जो लिखा,
0: उन्होंने कहा कि जो लिखा है वो लिखा है, बस यही है, यही आपको, चाहे समझ में किसी को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मगर वो लफ्ज वहां जरूरी है। एक इंसान है सिर्फ, बाकी सब ने कॉम्प्रोमाइज किया। जिगर मुरादाबादी साहब थे, जिगर मुरादाबादी साहब ने तो खैर बिल्कुल ही एक तरह से लिखा ही नहीं कभी। वो कहते थे कि फिल्मों में मुझे काम नहीं करना, फिल्मों में नहीं लिखना, तो हालांकि बाद में उन्होंने रिग्रेट किया। तो एक साहिर लुधियानवी साहब के तो बहुत सारे वो हैं। एक बड़ा अच्छा उनका नज्म है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, ये बड़ी खूबसूरत तो नज्म है।
1: अगर आप हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए इसको थोड़ा सा गुनगुनाएं तो हमें और अच्छा लगेगा।
0: वो मुझे लगता है कि फिर मोहम्मद रफी साहब की तौहीन हो जाएगी। मैं अब उतना अच्छा नहीं गा सकता हूं, लेकिन हाँ मैं एक मिसरा जो है उसका गुनगुना देता हूं आपके लिए, कि मुझे आप पुराने दिन अपने याद दिला देंगे जब मैं कभी।
1: मेरी कोशिश यही है, मेरी कोशिश यही है आज।
0: चलो एक बार फिर से

0: जमाने में था, तो शायद इसलिए मैं थोड़ा अलग था। तो मुझे ये जो नफस लफ्ज है ये बड़ा अपील करता है, मुझे इसका मानी नहीं मालूम था
1: जी।
0: वैसे नफस का अर्थ होता है ये जो इस नफस हम आपके साथ बैठे हैं, ये जो लम्हा है, ये जो क्षण है। और नफस का एक जो गहरा मतलब है वो है सांस, ये जो प्राण हम बोलते हैं जिसे, तो हर नफस आ रहा है जा रहा है, तो इस ये नफस का मतलब है। तो मुझे तब इसका मतलब मालूम नहीं था। तो जब मैं एक संजीदा शायरी में उतरा तो मुझे किसी ने फिर इसका मतलब बताया, कहने लगे ये आपने रख तो लिया लेकिन आपको इसका मतलब मालूम है। तो हमारे महेंद्र प्रताप चांद साहब हुआ करते थे यहाँ, और उसके बाद मुजफ्फर रजमी साहब ने भी मुझे कहा, कहने लगे आपका जो आप जानते हैं आपका जो तखल्लुस है नफस अम्बालवी, इसमें जो नफस लफ्ज है ये एक बड़ी कमाल की चीज है कि इसमें आपको पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा नफस के नाम से
1: जी।
0: क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक जरा सा लफ्ज है उसको आप जरा उसमें एक थोड़ी सी तरमीम कर दें तो मतलब बदल जाते हैं
1: जी।
0: तो ऐसा ही कुछ इसमें भी है। तो ये एक मैं बड़ा खुशकिस्मत भी हूँ,
1: हालांकि यूनिक लफ्ज है ये जी,
0: तो बड़ा एक यूनिक सा लफ्ज है, मुझे पसंद था तो मैंने तब रख लिया। तो उसके बाद मैंने बदला नहीं कभी, तो फिर मैं इसी नाम से नफस अम्बालवी के नाम से ही चलता रहा। और आज मेरे को सारी दुनिया में जो है वो कमलेश कौशिक तो बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ मेरे जो नजदीकी दोस्त हैं या मेरे मरीज जो हैं वो मुझे कमलेश डॉक्टर कमलेश कौशिक के नाम से जानते हैं, लेकिन साहित्य की दुनिया में तो मैं नफस अम्बालवी ही।
1: और जैसे नफस अम्बालवी जब भी एक ख्याल आता है तो अगर हम अम्बाला में रहते हैं और यहाँ ये हमारी धरती जो कर्म भूमि है तो अम्बालवी का मतलब है कि हम जुड़े हैं सारे आपस में,
0: ये भी एक परंपरा है।
1: रेडियो वितस्ता का भी यही मकसद है और ये भी अम्बाला के लिए पिछले दशक से कार्य कर रहा है और आज अब ये अम्बाला की एक आवाज बनी है। तो आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए सुपोरी साहब, बात यह है आपका नाम तो भारत है, आपने मेरे नाम को कहा कि इसमें अम्बालवी जुड़ा हुआ है, तो आपके साथ तो सारा भारत ही जुड़ा हुआ है। भारत सोपोरी, कितना खूबसूरत नाम है आपका। मैं आपका क्या कहूं, वो कह मैं जैसे मैंने पहले कहा, हालांकि मैं कारोबार तो लफ्जों का ही करता हूं
1: जी,
0: और मैं बड़ा अमीर हूं इस मामले में, मेरे पास बहुत से लफ्ज हैं, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज हम दे ही नहीं सकते। मैं आपकी मोहब्बतों का, आपकी इज्जत अफजाई का मैं वो कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है, अल्फाज नहीं है, मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना मशकूर व ममनून हूं आपका कि आपने मुझ जैसे एक छोटे से शहर को यहाँ बुलाया और इतनी इज्जत अफजाई की। और दरअसल मैं आपसे ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन उसमें मैंने अगर मैं ये कहूँ कि सबसे खूबसूरत अगर कोई इंटरव्यू है तो वो आपने वो सवाल पूछे, आपने वो चीज़ें निकाली अंदर से ढूंढ के, और आपने जिस तरह से दोस्ताना तरीके से मुझसे सब सवालात किए, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और रेडियो वितस्ता का मैं बहुत हैरान भी हुआ कि आपने इतना खूबसूरत स्टूडियो बना रखा है जिसे देखकर लोग यहाँ आए। मैं कहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आइए, आप यहाँ आकर इनसे मिलिए, इनको देखिए और देखें कि लोग किस तरह से काम करते हैं। मैं तो कम से कम बहुत मुतासर हुआ हूँ आपसे, और मैं फख्र करता हूँ कि हमारे इस छोटे से शहर में आप जैसे इतने अच्छे काम करने वाले लोग और इतना अच्छा रेडियो स्टेशन FM बनाया हुआ है आपने, तो मैं वाकई मैं तो तारीफ भी नहीं कर सकता कि कितनी तारीफ की जाए इस बात की, मैं जो भी कहूंगा वो कम ही रहेगा।
1: तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज यहाँ पे तशरीफ आवर हुए और हमें बहुत सारी बातें बताई, पूरे विश्व का आपने हमें भ्रमण कराया, और कुछ मौके तो ऐसे भी आए जहां पर हम इमोशनल भी हो गए क्योंकि जिंदगी का एक हिस्सा हमारा है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका एक बार फिर अपने रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और आपसे और सभी श्रोताओं से

0: इजाजत लेते हैं, अगले कार्यक्रम में हम आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रख लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी भाग 3। आज के आमंत्रित अतिथि थे जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर नफस अंबालवी। एडिटिंग व रिकॉर्डिंग दीपक कश्यप। प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन भरत सुपोरी। ये थी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

समय की रफ्तार कभी थमेगी नहीं और ना ही जमीन और आसमान का मिलन होगा। जैसे चांद कभी धरती पे आ नहीं सकेगा या उतरेगा नहीं, वैसे ही जैसे इन पानियों का बहाव रुकेगा नहीं, रुकेंगी नहीं हवाओं की सरगोशियां, रुकेंगी नहीं मौसमों की गर्माहट और ठंडक। बेशक तुम्हारी मोहब्बतों में शादाबियां हैं।

अलग हो चुके हैं। रोज देखता हूं बंद कमरे की खिड़की से थके हारे परिंदों की परवाज अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए, एक उम्मीद लिए कि सुबह की बरसात भिगोएगी हमारी जात को, हमारी मुस्कुराहटों को।

फुर्सत के लम्हों में क्या कभी ख्वाबों की ताबीर होगी? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि मेरे ख्वाब थे फीके फीके और तुमने रंग भर दिए। कैनवास पे उतारने की कोशिश भी की, पर रंग कच्चा था जो बिखर गया, लुप्त हो गया।

ये बेताबियां हैं मेरी उदासी का सबब। चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है दर्द की इंतहा, और दर्द उठता है दिल में शब रोज। सजदों में बोलते परिंदे मेरी खामोशी को बांप लेते हैं। ये नदी मेरे पैरों को छूकर गुजरती है, एहसास दिलाती है गुजरे हुए पलों का, मेरे अपने

आज इन बर्फीली घाटियों में एक जिंदगी खामोश है। यहां लम्हे चुप हैं पर रातें ही शादाब, सन्नाटा पसरा है। गुप अंधेरे भी यहां बोलते हैं, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो, तोड़ दो अपनी चुप्पी, अपनी उदासी को। आज यहां इन बर्फीली हवाओं में पत्थर भी पिघलते हैं, यहां मेरे सब्र का पैमाना भी अब टूटा जा रहा है। कुछ कहो, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे हम आपसे इजाजत। नमस्ते।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्था के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। उन प्रोग्रामों को प्रसारित करते हैं जो रखते हैं आपसे सरोकार। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 4 सेकंड। तो चलिए आज की यह बातचीत भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। उम्मीद है कि इन लम्हों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपके दिन को गौरव तथा प्रेरणा से भर दिया होगा। दोस्तों, आज का दिन पूरे राष्ट्र के लिए दोहरे गौरव और श्रद्धा का दिन है। आज है महात्मा गांधी जी की जयंती और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। इन दोनों महान विभूतियों ने अपने अपने तरीके से देश को एक नई दिशा दी। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की ओर से बापू और शास्त्री जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। इसी अवसर पर दोस्तों, आज बात करते हैं एक बेहद गौरवमयी विषय पर, जो है अपने इतिहास को जानना ही अपनी जड़ों को पहचानना है। भारत का इतिहास हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति और संघर्ष की एक अद्भुत गाथा है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता से लेकर वेदों और उपनिषदों का ज्ञान तक, मौर्य और गुप्त साम्राज्य के स्वर्णिम युग से लेकर स्वतंत्रता संग्राम की अनगिनत कुर्बानियों तक, हर युग ने इस धरती को कुछ न कुछ अनमोल दिया है। ये इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं, बल्कि ये हमारी पहचान और हमारे संस्कारों की नींव है। लेकिन आज की पीढ़ी अक्सर अपने गौरवशाली इतिहास से दूर होती जा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाता है, वो अपनी दिशा भी खो देता है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे महापुरुषों का जीवन हमें यह सिखाता है कि इतिहास से सीख लेकर ही हम एक बेहतर भविष्य गढ़ सकते हैं। हमें अपने बच्चों को अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने वीरों की गाथाओं से परिचित कराना चाहिए, ताकि वो अपनी जड़ों पर गर्व कर सके। दोस्तों, आइए हम सब अपने गौरवशाली इतिहास को जाने, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो अतीत का सम्मान करता है, वही एक उज्जवल भविष्य की नींव रख पाता है। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विषय, और हर दिन आपके लिए 4 पंक्तियां लाता हूं। आप सभी के नाम आज की 4 पंक्तियां, और आज की पंक्तियां यूं हैं: सदियों पुरानी है यह धरती, हर कण में बसा इतिहास। सदियों पुरानी है यह धरती, हर कण में बसा इतिहास। वीरों की गाथाओं से रोशन है इसका हर एक पहरा। वितस्ता भी तो बहती है इसी विरासत को सहजते हुए, वितस्ता भी तो बहती है इसी विरासत को सहजते हुए, यही सिखाती है अतीत से जुड़ना ही भविष्य का असली सफर। यही सिखाती है अतीत से जुड़ना है भविष्य का असली सफर। तो दोस्तों, जाते जाते आपको कल के कार्यक्रम का विवरण बता देता हूं। कल 3 अक्टूबर 2026 शनिवार को जो कार्यक्रम हम लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। वंदे मातरम से हम करेंगे शुरू, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत। 7:05 पर सरगम एपिसोड 6 होगा, पेश करेंगे आरजे किरनी। 8:30 बजे किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 17 होगा। शादी कब करें स्वयं निर्णय लें। 9:30 बजे होगा मिले जुले गीत कार्यक्रम, शीर्षक होगा इंतजार, और 10:05 पर होगा काव्य गोष्ठी एपिसोड 7 पंजाबी में कार्यक्रम होगा। हमारे साथ होंगी मिस जोबन चीना, पेश करेंगे आरजे सेजल। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल, और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विस्थापन का दर्द एपिसोड 1 पेश करेंगे भारत सोपोरी। इसमें हमारे साथ होंगे रोमेश पंडिता, भारत पंडित और संजीव रैना।
8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है खुशबू। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आशा करता हूं कि आपको कल के कार्यक्रम पसंद आएंगे। अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का ये सफर और आज का ये वक्त आपके साथ बिताकर अच्छा लगा। उम्मीद है कि बातचीत आपके मन में अपने इतिहास के प्रति एक नया गर्व और जिज्ञासा जगा गया होगा। जी हाँ दोस्तों, अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। लेता हूं आपसे विदा। FM 90.0 MHz रेडियो व्यवस्था के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कल सुबह तक के लिए शुभरात्रि। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।